नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में

आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम।

0: पापा
1: लियाओ 3000।
2: ओ क्यों पाई?
1: मेरा जेब खर्च।
2: ओए हुणे तो सिर्फ 2000 ही कैश ने।
1: अरे पापा बुलेट ट्रेन दे जमाने विच तुसी बैल गड्डी चला रहे हो, डिजिटल भुगतान चलाओ।
2: हैं?
1: है नहीं। हाँ सीधे UPI तो भुगतान करो, ए आसान है।
2: ओए वाह मैनू भी सिखा ते अपने 1000 ले जा।
1: अपना मोबाइल लियाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन हुणे आसान।
5: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउण लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
6: हुण तुसी वी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन, ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
5: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
7: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
8: गुरु नानक
9: आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिति 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम हड बीतियां जग बीतियां नवा सिलसिला साखियां पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी।

सुनना ना भुलना। प्रसारण समा दोपहर 12:30 बजे दिन शुक्रवार। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं।
1: अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं।
0: वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: हो बिबोसिस बोली तो एड्डा पानी से तुसी सारी ता ज्वेलरी मेरी पीखिया ने पाई सारी ता ज्वेलरी मेरी माई खेने पाई इखो चवीच ओदे खर धानी जदो जदो जिदों लड़दा ते लाडे लाडे कर दानी जदों लड़दा ते लाडे लाडे कर दानी
1: ना ए... ना ना ना डॉली थोड़ी जी अंग्रेजी कट रह गई इंदे च ऐड ऑन कर देंदी जदों फाइट दा ते लाडे कर दानी
0: हाँ चलो कोई गल नहीं तुसी पूरी करती पब्लिसिस
2: मैनू भाई बाकी ता गल डॉली समझ नहीं तेरी आई है बस मैनू ऐ जे पता लग गया भी तू खिचड़ी ते कड़ा दोने ना कठे जे करते हुण ना किसे तो खादे जाने आ ते ना किसे नू इहदा स्वाद आउणा है
1: सही गल है आ जिहड़ा अंग्रेजी दे विच जिहड़ा तड़का लाया है ना ए मैनू समझ नहीं आई ए तियां पंजाब विच मनाईया जा रही ने या फिर कैनेडा दे विच तियां मनाईया जा रही ने
0: जो मर्जी समझ लो तुसी बबली सिस
1: वैसे एक गल दसा वीडियोज मैनू कैनेडा दी भी आईया ते लोकी उत्थे भी तियां मनांदे मैं देखे पर एहो जिया बोलियां ता नहीं मैं उत्थे देखियां
0: ओहो बबली सिस ए जॉली दी स्पेशल बोलियां है
1: ओके फिर इन्हां बोलियां ते इक किताब ही लिख दे आने वाले जेडे बच्चे है जेड़ा असली अपना विरसा ता भुल ही रहे शायद आई विरसा याद रख लें सारी इथा ज्वेलरी मेरी पेखिया ने पाई आही समझ आऊगा उन्हां नूं
0: ओहो छड्डो बबली सिस हुण थोड़ी वारी है बस तुसी दसो तुसी केड़ी पंजाबी बोली पाऊंगे हुण
1: मतलब ए की पंजाबी विच पावा कि तेरे वाली अंग्रेजी विच पावा
2: नहीं गल सुन ला भाई बबलीए मैनू ता पंजाबी जी सुना दे आ जेड़ी थोड़े वाली अंग्रेजी है ना ए ता भाई फलाई करके मेरे उत्तों दी जांदी आ
1: चल फिर मेनू भी पंजाबी विच ही आंदियां ने बोलियां बोलनियां आ जेड़ी अंग्रेजी च तड़किया ए ता मेरे कोलो लग देनी मैं लगी आ बोली पौन मगर वारी लैनी है तुसी दोनों ने

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले, नखरे ना कर।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
0: ऐ ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनूं HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते सही दोस्ती निभाओ ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
3: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य।

0: संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए

0: क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने दो दो गोल किए जबकि अभिषेक ने एक गोल दागा। और विशाल अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स कवरिंग 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र

ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਲਾਮ।

डियर जिंदगी, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित त्रिवेदी का संगीत और कौसर मुनीर ने इसे लिखा। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
5: जी।
4: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये जवानी है दीवानी फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही आज का ये सफर चित्रलोक का यहीं संपन्न होता है।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही
2: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे,
3: ओए हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे।
0: भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन, उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

14 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

0: हुआ।
1: पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस

से पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

नई दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती बेफिक्र अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ

सालों की मेहनत रंग लाई और साल 1999 में सैफ अली खान को वो सफलता मिली जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म थी

के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

0: I love you. I love you.
1: इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को समझाया और बस वो रम गए इस किरदार में।

0: चेहरा ऐसा खिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
1: ये वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी ना किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद ना करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सिर्फ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी, और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे, और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

सैफ अली खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सेफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

अभिनय में एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आज।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉकटेल।

क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीग से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, काला कांटी, बाजार और शेफ। शेफ फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग ली। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्टर गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

जेडे भी स्रोते आए हुए मेहमान नाल कोई मुश्किल जां फिर कोई गल सांझी करना चाहुंदे ने तां 01-64-42-341 नंबर ते डायल कर सकदे ने। सुनना जरूर 20 अगस्त दिन वीरवार दोपहर 12:10 ते हफ्तावारी सिलसिला मुश्किल दसो हल दसांगे।

0: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा है जी गीत पिटारा, ते स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो रहा है 10:10 ते 57 सेकंड दा। प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुनवा रहे हैं तुहानू लाल चंद यमला जट दी आवाज़ दे विच।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, सौन दे महीने विच जद पेके गईयां कुड़ियां नूं सहेलियां मिलन आउंदियां तां हासे ठठे गल्लां बातां ते अपने पन नाल रौनकां लग जांदियां ने। अते एसे ही विषय ते अनमीत कौर ते बलजीत शर्मा जी लैके आ रहे ने प्रोग्राम पिंडां आले दे तहत विशा त्रिंजन।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं।
1: अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं।
0: वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: प्रोग्राम गीत पिटारा के तहत अगले गीत का आनंद मानते हैं कुलदीप मानक की आवाज़ के, जिस गीत के बोल लिखे ने प्रीत महिंदर तिवारी ने।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी गीत पिटारा दे स्टूडियो की घड़ी ते समा हो रहा है 10:44:47 का। आओ हुण प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुनते हाँ हंसराज हंस की आवाज़ दे विच। गीत दे बोल लिखे ने संजीव आनंद ने, संगीतबद्ध किया है चरणजीत आहूजा ने।

नमस्कार, आप सुनेंगे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सीमा सुरक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तमिलनाडु में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक से मुलाकात की। वित्त मंत्री भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। कहा, परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अमेरिका के राजदूत सार्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय और स्थानीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रीय सरकारी संचार का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। भारत ने काबुल के सरकारी अस्पताल को दवाइयों और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह सहायता अफगानिस्तान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉन

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ईरान की मदद करने वाले देशों को बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी दी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद में मतदान होंगे। भारत ने गोल टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार के पूरे मैच में पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बहुत सारी बातें होंगी बॉलीवुड जगत की, बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की और साथ ही साथ बॉलीवुड सरताज का क्विज भी होगा। तो हो जाइए तैयार। बातों की शुरुआत करने से पहले एक शुभारंभ वाला गाना तो बनता है।

तो शुभारंभ हो चुका है बॉलीवुड रील्स प्रोग्राम का। बातें होने वाली हैं शुरू बॉलीवुड की, और बॉलीवुड की बातें शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज कौन है जिनका है बॉलीवुड सेलेब्स का बर्थडे, और बॉलीवुड सेलेब्स में कौन है आज जो बर्थडे मना रहे हैं। जी हाँ, बताते चले आपको, रणदीप हुड्डा है आज उनका है बर्थडे। हैप्पी वाला बर्थडे विश कीजिए सभी लोग इन्हें। और रणदीप हुड्डा ने अपने करियर की जो शुरुआत की थी 2001 में मीरा नायर की फिल्म मानसून वेडिंग से की थी, और उसके बाद राम गोपाल वर्मा की डी जो की 2005 में आई थी, इससे उन्हें एक पहचान मिली। और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी इन्होंने काम किया, और हाईवे, सरबजीत, साहेब बीवी और गैंगस्टर किक और स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फिल्मों में ये अपना अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। तो इन्हें करिए आप हैप्पी वाला बर्थडे विश। और इसके अलावा अमृता पुरी का भी है आज बर्थडे। मुंबई, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, और एक्टर मॉडल के तौर पर उन्होंने काम किया। 2010 में सोनम कपूर की फिल्म आयशा से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, और काय पोछे फिल्म जिसका मैंने आपको गाना अभी अभी सुनाया, इस फिल्म में भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन का किरदार निभाया था। मेड इन हेवन और फोर मोर शॉट्स प्लीज वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया है। तो इन्हें भी कीजिए हैप्पी वाला बर्थडे विश। और इसके अलावा जाकिर खान का भी है बर्थडे। तो भाई जाकिर खान कौन नहीं जानता है इनको, हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं। लेखक के तौर पर भी ये काम करते हैं, कवि और अभिनेता तो है ही है। और आपको बताते चलें कि सितार प्लेयर और गिटार प्लेयर भी ये करते हैं। जी हाँ, ये दोनों चीजों पर इन्होंने डिप्लोमा लिया हुआ है। और कॉमेडी और किस्सा गोई अपने हुनर के लिए पहचाने जाते हैं। कॉमेडी शोज कर चुके हैं और लोगों को हंसा चुके हैं, तो इनका भी है बर्थडे। इन्हें भी करते हैं हम हैप्पी बर्थडे विश, और बढ़ाते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम की बातें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बातें हो रही हैं बॉलीवुड की और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और जिनमें अलग अलग एक्टर अलग अलग कैरेक्टर करने को तैयार है। उनमें से एक है कौन? अक्षय खन्ना। जी हाँ, अक्षय कुमार तो कर ही रहे हैं लेकिन अक्षय खन्ना भी उसी रास्ते पे चले गए हैं और अब बताते हैं आपको एक अलग अवतार में दिखाई देने वाले हैं और वो कौन सी फिल्म होगी और कैसे अवतार में दिखेंगे ये बताएंगे आपको। लेकिन ये प्यारा सा गीत पहले सुन लीजिए।

इंडस्ट्री की ताल से ताल मिलाकर अक्षय खन्ना भी चल पड़े हैं एक नई राह में। हनुमान जैसी शानदार सुपरहिट फिल्म, सुपर हीरो वाली फिल्म, साउथ फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा महाकाली लेकर आ रहे हैं और बतौर निर्माता प्रशांत ने तेलुगु सिनेमा की पौराणिक फिल्म को तैयार किया है, जबकि महाकाली के डायरेक्शन की कमान फीमेल डायरेक्टर पूजा अर्पण

कल्लूर ने संभाली है। और फिल्म की बात कहें तो जबरदस्त होने वाली है ये फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाने वाले हैं। हाँ जी, ये पहली बार होगा कि ऐसा कैरेक्टर वो प्ले करने वाले हैं। वैसे इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा 24 अगस्त को उठ जाएगा, क्योंकि 24 अगस्त को मेकर्स ने कुछ अलग करने की सोची है। और इस फिल्म महाकाली में अक्षय का फर्स्ट लुक और वीडियो रिलीज किया जाएगा 24 अगस्त को। धुरंधर की बहुत जबरदस्त हिट, सुपर हिट और अपार सफलता के बाद अब गुरु शुक्राचार्य की भूमिका में निभाते हुए नजर आएंगे हमारे अक्षय खन्ना। और माइथोलॉजिकल फिल्म है ये, और कैरेक्टर वाकई बहुत जबरदस्त है। और अब ये देखना है कि पहली बार अक्षय साउथ की फिल्मों में काम करने वाले हैं, और साउथ की फिल्म से उन्होंने अपना जब खाता खोल ही दिया है, तो आने वाले समय में भी बहुत सारी फिल्में कर सकते हैं वो। वैसे कुछ ऐसी बात आपको भी बता दूं कि अक्षय खन्ना जो है बहुत लाइमलाइट से हटकर काम करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं फुल ऑन, और कभी भी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी अपने साथ बटोर कर नहीं लाते, इसलिए चुपचाप अपना काम करते हैं और फिल्म से एक साइड लाइन ले लेते हैं। अब देखना यह है कि शुक्राचार्य के कैरेक्टर में कैसे लगेंगे हमारे अक्षय खन्ना। अभी हलचल फिल्म से शान और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना।

0: 자자.
1: 오이.
2: वैसे क्या क्या होता रहता ना आर्टिकल 370 और हक जैसे फिल्मों में गंभीर मुद्दे लेकर आने वाली यामी गौतम अब एक नए अवतार में आपको दिखाई देने वाली है। जी हाँ, आनंद एल राय की फिल्म में यामी गौतम दिखाई देने वाली हैं और नए अवतार में दिखाई देने वाली हैं। फिल्म का नाम भी कुछ नया नया सा है, नई नवेली। और यामी गौतम इस फिल्म में मुख्य भूमिका में होंगी। फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है। फिल्म 16 तारीख अक्टूबर में रिलीज होने वाली है और फिल्म का मजेदार पोस्टर भी रिलीज हुआ है। मजेदार इसलिए कहेंगे क्योंकि नई नवेली में जो यामी गौतम है लाल रंग के कपड़ों में दिखाई दे रही हैं और उनके हाथ में एक दुपट्टा है और एक शैतान को वो उस दुपट्टे से कसी हुई हैं। यानी कि ये जो फिल्म है ये हॉरर कॉमेडी होने वाली है। 16 अक्टूबर 2026 को दशहरे के मौके पे ये फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन करेंगे और हिमांशु शर्मा ने और दिव्य निधि शर्मा ने ये जो फिल्म है वो लिखी है और आनंद एल राय हिमांशु शर्मा जो है प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के और संगीत जीवी प्रकाश जी ने दिया है। अब देखिए क्या होने वाली है ये फिल्म, कैसी होने वाली है। नई नवेली की जो कहानी है बिल्कुल हटकर होने वाली है। एक ऐसी दुल्हन की कहानी है जो शुरुआत में तो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से रहती है लेकिन बाद में जो है एक अलग ही तरीके के रूप में वो अपने घर पे दिखाई देती है और सब उसे डायन भाभी समझने लगते हैं। बस ऐसे ही कुछ होने वाला है इस फिल्म में, यानी कि कॉमेडी का तड़का लगेगा हॉरर के साथ। तो जल्द दिखाई देगी यानी कि 16 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर नई नवेली में यामी गौतम। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी बातें होंगी आपके साथ।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या डब्ल्यू

0: www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं बबीता रावत और समय हो चला है आपसे बॉलीवुड सरताज का क्विज पूछने का। और बॉलीवुड सरताज का आज का क्विज बहुत आसान है। यामी गौतम की फिल्म जो आने वाली है, जो अपकमिंग मूवी है, उसका उसकी बात करी है हमने और उसी फिल्म का नाम आपको हमें लिखकर भेज देना है। जी हाँ, यामी गौतम की अपकमिंग मूवी का क्या नाम है उसे लिखकर हमें भेज दीजिए 9868107070 पर अपने नाम के और अपने जिस जगह से आपने हमें मैसेज किया है उस जगह के नाम के साथ। फिर से बात बोल दूं आपको, एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। यामी गौतम की अपकमिंग मूवी जो 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जी हाँ, चलिए एक और चीज भी जोड़ दिए, उसका नाम हमें लिखकर भेज दीजिए।

फिल्मों के दीवानों को अपने एक्टर एक्ट्रेसेस से इतना प्यार होता है कि जब भी चाहते हैं बस उनकी ही फिल्में देखना चाहते हैं। और ऐसे में कुछ फिल्में तो ऐसी होती हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया होता है और उसके बाद वो फिल्म हमें घर पर ही बैठकर देखने को मिल जाती है। जी हाँ, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो ओटीटी पे आने वाली हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कौन कौन सी फिल्में इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल 21 अगस्त को होने वाली है रिलीज। अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी जैसे बड़े स्टार इस फिल्म में नजर आ रहे हैं और स्क्रीन पर स्टार्स की पूरी टोली आपको दिखने वाली है। फिल्म की कहानी बहुत मजेदार है और बड़े स्क्रीन पर इस फिल्म ने बहुत जबरदस्त नाम कमाया है। वैसे स्टोरी काफी लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन जिन्होंने देखी नहीं है, एक छोटा सा स्पॉइलर दे देती हूँ। अमीर कारोबारी के पास इतना सारा काला धन होता है कि से छिपाने के लिए एक बड़ी टेंशन होती है और बस इसी आइडिया को निकालते हुए इस पूरी फिल्म की प्लानिंग की गई है। हाँ, अब देखेंगे क्या कि कैसे कॉमेडी का तड़का लगता है इस फिल्म में, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी वेलकम टू द जंगल में। इसके अलावा साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन भी 21 अगस्त को ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आ रहे हैं और जैसा कि आपको पता ही है, जब पुलिस अधिकारी के रूप में कोई नजर आएगा तो फिर फुल ऑन एक्शन मूवी होगी ये। इनके साथ विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन और प्रियमणि जैसे कलाकार आपको नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एच विनोद ने किया है और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप इनका मजा ले सकते हैं।

0: टक टक टक करते रहते हैं। और जब फिल्मों की बात आती है, तो जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है, तो उसकी रिलीज से पहले पहले बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसे कि उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही प्री बुकिंग की बात होती है। हाँ, कुछ कुछ फिल्मों की जो बात होती है ना, वो इतनी अनोखी होती है कि एक हफ्ते पहले से ही उस फिल्म की प्री बुकिंग होने लग जाती है। और जब फिल्म बहुत जबरदस्त हो, तो क्यों नहीं होगी इसकी प्री बुकिंग। टॉक्सिक फिल्म की बात कर रहे हैं, 26 अगस्त को ये फिल्म सिनेमा घरों पे दस्तक देने वाली है, लेकिन रिलीज से 7 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग होने लगी है। हाँ जी, होने लगी है। और जब बात आती है, तो रॉकिंग स्टार यश की बात आएगी, क्योंकि टॉक्सिक में वही काम कर रहे हैं। दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज हो रही है, और ताज्जुब की बात यह है और बताने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को लगभग 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। और ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो इतनी बड़े लेवल पर एक साथ रिलीज की जा रही है बड़े स्क्रीन पर। इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया के साथ यश की फिल्म को एक लंबे इंतजार के बाद आप देख पाएंगे। और फिल्म वैसे मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन धुरंधर 2 के क्लैश के चलते इस फिल्म को अब रिलीजिंग डेट इसकी 26 अगस्त कर दी गई है। भाई, छाई रहेगी हमारी टॉक्सिक, और कैसे रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हैं इस फिल्म में। और क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी अभी अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

बाकी जब ट्रेंड चलता है ना तो फिल्मों में इसी तरीके का ट्रेंड चलता है, अलग अलग रोल, अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो प्ले कर रहे हैं। उसी में से अल्लू अर्जुन भी ऐसे ही है। अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आने वाली है राका, और इस फिल्म में उनका जो रोल है वो डिफरेंट होने वाला है। अभी हाल ही फिलहाल जो रिलीज हुआ है पोस्टर, उसमें उनको एक भेड़िए के रूप में दिखाया दिया है, और जब देखें तो फिर नुकीले से पंजों के साथ एकदम इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं अल्लू अर्जुन, और बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल चेंज से लग रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि राका फिल्म में बहुत सारे ऐसे गेस्ट अपीयरेंस वाले कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं जो बिल्कुल अलग हैं। विल स्मिथ का नाम उनमें से एक है, और एक कैमियो करते नजर आएंगे। वैसे पहले भी शाहरुख खान का भी नाम आया था इस फिल्म में कि वो कैमियो करेंगे। अब ये देखना है कि अल्लू अर्जुन के साथ ये दोनों कहां पे क्लैश करते हैं मूवी में। जी हाँ, आमने सामने कहां पर रहते हैं। वैसे दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, जानवी कपूर इस फिल्म में दिखाई देंगे, और अभी हम ये गाना सुना रहे हैं, उसके बाद अनाउंस करेंगे हमारे आज के बॉलीवुड सरताज का नाम।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य

0: पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड सरताज का नाम जल्दी से अनाउंस कर देते हैं क्योंकि हमने फोन मिलाया और उनके पास तक हमारी लाइन नहीं जुड़ पाई। बहुत कोशिश करी हमने आज के हमारे बॉलीवुड सरताज से बात करने की, पर क्या करें, वक्त का तकाजा है भाई, किसी न किसी दिन तो फिर से आपसे मुलाकात होगी।

हमारे बॉलीवुड सरदार से बात करने की, पर क्या करें, वक्त का तकाजा है भाई, किसी ना किसी दिन तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, रूबरू करेंगे हम आपसे। नई नवेली है आंसर, क्या है, यामी गौतम की जो अपकमिंग मूवी है, आने वाली है, उसका नाम है नई नवेली। और सबसे पहले हमें जो आंसर मिला है, प्रवीण चौहान खरगोन, मध्य प्रदेश से इन्होंने दिया है सही सही जवाब, और बिल्कुल सही जवाब है। और आज बने हैं आप हमारे बॉलीवुड सरताज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ ही ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हुए अगले प्रोग्राम की तरफ प्रस्थान करते हैं, और अगला प्रोग्राम है प्ले इट कूल, और प्ले इट कूल में आपके साथ मानसी होंगी, और उसके बाद होगा मेरा वाला सॉन्ग। आप और हम करेंगे एक दूसरे से साझा अपनी प्लेलिस्ट, तो करिए जल्दी से जल्दी मैसेज, कब, 1 से 2 के बीच में। अभी आपसे मिलते हैं ठीक 1 बजे, तब तक के लिए गाना एंजॉय कीजिए और अगला शो भी एंजॉय कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरे कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना

0: विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The India-Japan Defense Ministers meeting is currently underway in New Delhi. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, are co-chairing the meeting. The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaboration. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defense equipment and technology collaboration under the Make in India framework following Japan's revision of the three principles on transfer of defense equipment and technology. The meeting provides an opportunity to build a roadmap for further advancing bilateral defense and security cooperation. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasada were also present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skill development and sustainability. The ministers are on a visit to Singapore to participate in the fourth round of the India-Singapore Ministerial Roundtable to be held today. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. The medical supplies are aimed at augmenting healthcare services at the government hospital in Kabul. India has called for urgent reforms in the United Nations Security Council, UNSC, saying its structure and decision-making process must reflect present-day global realities and provide greater representation to developing countries. Speaking at a UNSC open debate on working methods, India's Chargé d'Affaires to the UN, Yojana Patel, said the need for reform is more pronounced and pressing than ever before. She noted that

0: जी प्रोग्राम चल रहा है, टेलीफोन मिलाओ जी, और डायल हो चुका है स्टूडियो का फोन नंबर 2240-341, ते देखते हैं केड़े कॉलर साडे नाल जुड़े ने ते कित्थों गल कर रहे ने। हेलो,
1: सत श्रीकाल मैडम, सत श्रीकाल मैडम,
0: हेलो,
1: सत श्रीकाल मैडम।

0: जी हो चुका है स्टूडियो का फोन नंबर डायल, और हो चुका है स्टूडियो का फोन नंबर डायल, और देखते हैं कि कौन कॉलर साढ़े नाल जुड़े ने ते कित्थों गल कर रहे ने। हेलो।
1: हेलो, मैं नरविशा भंडारी जी,
0: हाँ
1: तुहानू ते सारे सुन वाले श्रोतियां नू मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। शुक्रिया।
0: जी, साढ़े वालों भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी तुहानू। ते तुसी केड़ा की सुनने की फरमाइश लैके आए हो अज दे इस प्रोग्राम दे विच?
1: भैन जी, पहला मैं अपना तारुफ दे
0: हाँ जी,
1: दिया।
0: हाँ जी, हाँ जी, जरूर
1: मैं 1 वे ट्रैफिक रोड नेड़े बस अड्डा मानसा तो जगदीश
0: जी,
1: राय गर्ग बोलदा जी।
0: जी, साढ़े पुराने श्रोताओ, तुसी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा अज दे इस प्रोग्राम दे विच। ते सानू फरमाइश दस दिओ जी, अज दे इस प्रोग्राम दे विच की सुनना चाहंदे हो
1: भैन जी, फरमाइश तो पहला एक मैं जरूरी सूचना या एक संदेश देना चाहना
0: जी?
1: सारे श्रोतियां नूं। अज विश्व रेडियो दिवस दियां बहुत बहुत मुबारक।

0: जी हो चुकी है ट्रेन ट्रेन और देखते हैं कहड़े कॉलर साडे नाल जुड़े ने। हेलो,
1: हाँ जी माता जी, प्यार परी नमस्कार जी। बग्गा
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सिंह बोल रहे हैं, पिंड जगाराम तीर्थ नेड़े तलवंडी साबो जी।
0: जी बग्गा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा अज्ज दे इस प्रोग्राम दे विच। ते की सुनना चाहंदे
1: धन्यवाद
0: हो, गीत केड़ा सुनोगे?
1: धन्यवाद जी। गीत सुनांगे जी, अज्ज आपां जुनून फिल्म दे विचों कुमार सानू दा गाया होया कुछ लोग और थे प्यार कर गए। धन्यवाद
0: जी, आ रहा तुहाडे रेडियो सेट ते तुहाडे लई एक गीत।
1: जी।
0: जी।

0: जी प्रोग्राम चल रहा है, टेलीफोन मिलाओ जी और देखते हैं किहड़े कॉलर साडे नाल जुड़े ने। हैलो, सत
1: जी,
0: श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं मनजीत कौर बोलती हूँ जी, बठिंडे तो आर्या नगर, पिंड साडा खड़ियाणा।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है। ते गीत केड़ा सुनना चाहते हो अज इस प्रोग्राम च?
1: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दर्शना दे जी।
0: जी आ रहा है जी तुहाडी फरमाइश ते, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे विचों ये प्यारा जिहा गीत, सो एंजॉय करो।

0: सो एंजॉय करो। सो असी भी अज इस प्रोग्राम च आखरी कॉल लई है, क्योंकि प्रोग्राम जेड़ा है वो
1: हाँ
0: अपने अंतिम पड़ाव वाल वध रहा है।
1: हाँ जी हाँ
0: कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है मैडम, शुक्रिया।

कुमार सानू ते आशा भोंसले दे गाए ऐसे गीत दे नाल अज दा प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी दा वेला हुन मुकदा जा रहा है। सो अपनी रेडियो दोस्त रविशा भंडारी नू दिओ प्रोग्राम समाप्त करन लिया गया। धन्यवाद।

0: H Hockey World Cup at Wagener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore ministerial roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Teresa Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है
2: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द

0: जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देव भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र

0: भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश

ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तों, मिति 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम हड बीतियां जग बीतियां नवा सिलसिला साखियां पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी।

सुनना ना भुलना। प्रसारण समा दोपहर 12:30 बजे दिन शुक्रवार। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल।

0: पापा लियाओ 3000।
1: ओ क्यों पाई?
0: मेरा जेब खर्च।
1: ओए हुणे तां सिर्फ 2000 ही कैश ने।
0: अरे पापा बुलेट ट्रेन दे जमाने विच तुसी बैल गड्डी चला रहे हो, डिजिटल भुगतान चलाओ।
1: हैं?
0: है नहीं। हाँ सिद्धे UPI तो भुगतान करो, ए आसान है।
1: ओए वाह मैनू भी सिखा ते अपना 1000 ले जा।
0: अपना मोबाइल ले आओ।
1: ले ले।
2: भारत करदा है डिजिटल भुगतान,
3: हर लैंड देन होना है आसान।
4: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
5: श्रोतियों समा 2:41 का प्रोग्राम सुरीली दोपहर ते अगला गीत तुहानू सुनावांगे मनकीरत औलख की आवाज दे विच। इस गीत नूं सुनण दी फरमाइश करन वाले श्रोते ने नाम तुहाडे नाल सांझे कर लिए। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, रितिक ते बलवीर सिंह। वट्सएप राही साडे कोल स्रोते परगर सिंह ढिलो, जथेदार प्यारा सिंह, सुखदीप सिंह गिल पिंड ढिलवां जिला बरनाला तहसील तपा मंडी तो मैसेज कर रहे ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही ते महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो इन्होंने साडे कोल मैसेज किया। रमेश चावला पिंड ते डाकखाना खोहिया सरवत तहसील अबोर जिला फाजिलका तो आस्था जयश्री, संतोष चावला, हेमंत दीपक, रमेश चावला, राइजल हेजल, विहान चावला, रिजू बब्बू विहू चावला ते इन्हां दा सारा परिवार। बागा पुराणा तो सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत कौर रखड़ा, इन्हों का पोतरा तीक फतेह सिंह रखड़ा, पोतरी जसगुण रखड़ा इन्हों के नाल ने। वड़िंग खेड़ा तो मिंटू टोपस, पिंकी लवली ते नाल आरती अरोड़ा, सतीश कुमार बंसल पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तो, पिंड फुलो मिठी तो हरजत सिंह ढिलो, दीपेंद्र सिंह ढिलो, भोला सिंह बैणीवाल, बलकौर सिंह सिद्धू, तारी पेंचरा वाला, जीत सिंह कौलतर इन्हों के नाल ने। नत्त रोड तलवंडी साबो, बूटा सिंह मान, अमरजीत कौर मान, गुरप्रीत सिंह मान, महेंद्र पट्टी मंडी कला तो, पिंड फुलो मिठी तो राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, कुलजिंदर सिंह, जसप्रीत, जस्सी, गुणताज, वीर सिंह, सुखमन सिंह, हुसनर तो साढ़े तक मैसेज लिख के पहुँचा रहे ने। पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तो कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा राणी, शैलेंद्र कुमार, जगराज सिंह कणकवालिया, गंगा राम भूचो मंडी तो, बूटा सिंह राजा, कुलवंत शेख

का, अमरीक कपूर का, नाजर जमीर का, जथेदार जसवंत सिंह, गुरतेज सिंह कणकवाल, गुरतेज सिंह कमालू। ते लो जी, इन्हां ने रल मिल के पिंड संदोहर नेड़े मौण मंडी तो साढ़े तक मैसेज लिख के पहुंचाया। पिंड लालबाई जिला श्री मुक्तसर साहब तो नछत्र सिंह ढिल्लों, तेजा स्वामी, पिंड गिदड़बाह तो बाबू सिंह ढिल्लों, पिंड रामे तो बलबीर सिंह। व्हाट्सएप राही साढ़े कोल गुरु नानकपुरा बठिंडा तो किशोर सबलानी ते इन्हां दा परिवार साढ़े तक मैसेज लिख के पहुंचा रहा है। श्री गुरु नानक नगर 3 नंबर चिल्ला बठिंडा तो वीना रानी, आशा रानी, तेजस, निमल, हरगुण निमल, मंजू बाला, मनोज कुमार, बेगराज, मोहन लाल, जलेबी वाला चौंक, सिरकी बाजार, बठिंडा तो पिंड रामायण तो प्रकाश चंद, देसराज ते इन्हां दा सारा परिवार। गुरमेल सिंह सिरिए वाला तो इकले ही नहीं साढ़े तक मैसेज पहुंचाने वाले। सुखपाल सिंह, स्वर्ण कौर, लवप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, रुपिंदर कौर, नेशनल कलोनी बठिंडा तो, हरविंदर रोमाणा, जत्थेदार बाबा प्यारा सिंह, सतपाल बंगी, अविनाश गोदारा, अलबेल बराड़, जग्गा बराड़, गोले वाला तो। ते लो जी, इन्होंने सारे सोतों की रली मिली फरमाइश से तुहानू सुनानी आ मनकीरत औलख की आवाज़ दे विच एह गीत।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, सौन दे महीने विच जद पेके गईयां कुड़ियां नूं सहेलियां मिलन आउंदियां तां हासे ठठे गल्लां बातां ते अपने पन नाल रौनकां लग जांदियां ने। अते इसे ही विषय ते अनमीत कौर ते बलजीत शर्मा जी लैके आ रहे ने प्रोग्राम पिंडां आले दे तहत विशा त्रिंजन।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: जी श्रोतियो, समा 2:55 का बहुत थोड़ा समा साढ़े को बचे तो जल्दी तुम दस दे कि गुरु नाम भुलर की आवाज़ के गीत तुम जरूर सुना रहे, पर जल्दी कुछ सुरतियां नाम भी थोड़े साझे कर लिए। 1 ट्रैफिक रोड बस नेड़े बस स्टैंड मानसा तो जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा विकास गोयल, नीतू गोयल इन्होंने नाल ने, जगा सिंह रामा मंडी तो, बलजीत कौर रामा मंडी तो, इन्होंने पोतरे तनवीर, गुरवीर, मनवीर ते जसनूर, सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो, पिंड चरनाथल तो करमनदीप सिंह, हरमनदीप सिंह, जशनदीप कौर, हरप्रीत कौर, गुरविंदर कौर, मनप्रीत कौर, लोहा बाजार मलेरकोटला तो राकेश कुमार, पुष्पा राणी, आशु ते नाल ने ना दे तुषार, लाल सिंह नगर गली नंबर 15 बठिंडा तो, सुखपाल सिंह रतन, जसविंदर कौर, लवली रतन, विक्की रतन, सुखपाल सिरकी बाजार जरबीवाला चौंक बठिंडा तो, पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो मनजीत कौर, दीपिंदर सिंह ते इन्हां दा सारा परिवार, पिंड ते डाकखाना लोहगढ़ ठाकरा वाला जिला फिरोजपुर तो, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरनूर सिंह, डॉक्टर राम कुमार नारंग, बलदेव सिंह भुगानगढ़ भुख्याली तो, मंगा सिंह पिंड गंगा बलूकी जिला बठिंडा तो, इन्हां दी बेटी बंटी, रमनदीप कौर, प्रवीण कौर, दोस्त इन्हां दे गुरमीत, मेजर बेरिया वाला मनिया पत्ती वाले ते कुलविंदर गंगा अबलूकी। ते लो जी फिर सारे स्रोतियां दी रली मिली फरमाइश ते तुहानू सुनवा रहे हां जी गुरनाम भुलर दी आवाज़ दे विच गीत, पर उस तो पहला एक संदेश सुनांगे।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: की सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
2: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
2: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
1: हाँ।
2: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो
1: और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती वहां इशारों में भी बातें होती है, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही है, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी
2: जी।
1: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
2: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है, तो उनके बारे में।
1: और चित्रकार की बात आती है ना, चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
2: बिल्कुल।
1: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
2: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
1: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप किसी भी समय कुछ भी खाते हैं, और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं ऐसा लगने लगता है।
2: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है, चटोरापन कह सकते हैं।
1: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज

0: बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो
1: बिल्कुल
0: जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप
0: हाँ
1: कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये
0: जी,
1: चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप
0: ये
1: बताइए।
0: सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, सद्भावना का मतलब क्या होता है, सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी
0: और
1: भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं, यही विविधता हमारी ताकत भी है। और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला
1: बिल्कुल
0: के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे।
1: बिल्कुल, शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए
0: जी,
1: सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये
1: और
0: खाली
1: बिल्कुल
0: एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें एक गीत के
1: एक गीत
0: साथ।
1: सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया
1: हाँ
0: जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गाँव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस
1: हाँ।
0: वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी,
1: हाँ, जैसे
0: अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं, और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी, और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त तो परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी।
0: क्या
1: उन्होंने
0: बात है,
1: पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गईं और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की, लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दूह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक लसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
0: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र बना दिया था। और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो

0: चित्रकारी की थी, उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: बिल्कुल। तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ, शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते
1: गीत
0: गाने भी
1: सुनवाते
0: सुनते
1: हैं।
0: हैं, तो सुन ले।
1: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था, और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है।

0: रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादुई असर पैदा हो जाता है।
1: बिल्कुल सही।
0: बिल्कुल, अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका
1: भाई
0: देती
1: तभी
0: हैं।
1: तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
0: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है।
1: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
0: बिल्कुल,
1: और अब सुने एक गाना।
0: एक गीत।

0: जलवों की बरसात है।
1: क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है।
0: ओ, ओ, ओ, ओ सपने बिखरे
1: मोड़ मोड़।

0: क्यों हम
1: दीवाने हो जाए ना।
2: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवन समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
3: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है जो
2: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी।
3: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध हैं।
2: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जाने। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलु, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
3: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
2: हाँ,
3: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
2: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
3: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
2: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो समय संकट में है, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि से हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
3: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुवी, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
2: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता है वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
3: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन

0: उनकी जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है, जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो है जुड़ी हुई, जो उनकी लोकगीत है, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी। इसलिए
1: एक
0: बहुत
1: संदेश
0: जरूरी
1: के
0: है।
1: माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।
0: संदेश।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं। हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का
0: जी
1: उपयोग
0: जी
1: करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से चल
0: देखो,
1: सकता है।
0: जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है, या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं, तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे
1: बिल्कुल,
0: काम आती है, लेकिन
1: हाँ
0: जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है,
1: बिल्कुल।
0: उसका अपना अलग
1: और
0: महत्व
1: साथ
0: है।
1: ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने, कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: आज चंचल एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ये रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो, लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में
0: हाँ
1: महिलाएं या पुरुष उन लोक गीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस, एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें, तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं,
0: बिल्कुल
1: और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद, लेकिन ये नहीं हो सकता।
0: हाँ
1: और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां, उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं
0: लक्ष्य
1: है।
0: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है, और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छी बात लिखी
0: बिल्कुल
1: है
0: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया है कि खाने के लिए जीना नहीं है
1: जी।
0: बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आप खा लें।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तनहाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सूझता नहीं सिर्फ खाने के सिवा। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, या
0: हाँ
1: बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयां खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो
1: तब
0: जाता
1: होता है
0: है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। और
0: बिल्कुल, तो
1: साथ ही
0: अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल, और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे।

0: और मन को संतुष्टि भी दें। हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं। बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है।
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का
0: हाँ
1: ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: ये बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, यही सारी बातें शामिल होती है ना।
0: बिल्कुल।

0: तो ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
0: हाँ, ये जो
1: तो
0: आपने कहा ना,
1: बेहतर
0: कई
1: है।
0: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ना बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसकी वो पहने उनके काम आए।
0: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है। उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
0: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: इशा रही है
1: बिल्कुल, एक
0: आगे।
1: हमारे जो साथी साथी हैं वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म कपड़े से गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी हैं जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार, आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बनकर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें, हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं तो क्या हाल चाल है वहाँ के?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपना ये मकान वकान बनाने का, ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
1: जी अभी भी साइट चलती है, तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्त पर संगीत उत्पन्न 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आज।
0: जी और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
0: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया। तो बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी देती है।
0: क्या बात है। और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय?
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है। और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं? आप कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं?
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है। और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि है?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया। तो अपने बारे में कुछ
1: जी
0: बताइए।
1: जी मैं शिक्षक हूँ। प्री
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ। जी,
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप। तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डी गुड़िया के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी
0: क्या
1: जीवन।
0: बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी। बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है, चांदनी फिल्म का गाना है, लगी
0: जी
1: आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैडम जी। ट्रेन
0: नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप।
1: बस जम के इधर पूरे सवा पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं। तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है।
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती हैं और मजा आता है। तुम उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं ना, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो
1: ना।
0: बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप।
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी
0: आपने क्या-क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक है आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी हैं, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुमसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी। ये
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहां पर?
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी,
0: क्या
1: प्रसिद्ध
0: बात
1: है
0: है।
1: ये।
0: और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर, मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या
1: जी
0: करते हैं?
1: जी शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी। जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, एलईडी टीवी वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही के बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े, मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, मैं आपकी
0: जी
1: फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम है। जी
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो उसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत में।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन
1: जी
0: सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है।

0: तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की चीजें फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में हम लोगों के क्षेत्र में। और धान, अच्छा, धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
1: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
0: रबी फसल का सीजन होता है वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
1: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
0: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
1: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना।
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कर्ण शॉल होते हैं, मैं उसी का बिजनेस करता हूँ मैम।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम
0: अच्छा, और इनसे आप
1: जी,
0: क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम, डिजाइन
0: अच्छा
1: होते हैं, तो फिर उसी जो डिजाइन होगा
0: जी,
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी। जी बिल्कुल,
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम जी,
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: बिल्कुल। श्रीनगर
0: और बताइए।
1: और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए
0: क्या
1: नजर
0: बात है,
1: आते हैं, और झीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है,
0: जी
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं।

0: लाइटों का, जो जी लिडल में जो हाउस बोट होते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जो उनमें लाइटें होती है, तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
1: क्या बात है। और बताइए श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
0: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
1: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
0: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
1: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
0: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
1: जी
0: अपना अपना।
1: बिल्कुल। तो बताइए हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
0: जी एक फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम,
1: क्या बात है।
0: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
1: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारिया देड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश कंजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है
0: जी,
1: उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी
1: हाँ,
0: है?

0: बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है, तिल्ली खाते हैं, वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
1: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती वहाँ पे?
0: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
0: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है उसका प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं, 4 फीट 5 फीट ऊंची।
1: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाए?
0: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रहे हैं।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी, बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ। मैम
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही हैं?
1: हाँ मैम, गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: गाने तो नहीं, पर प्राग मतलब मैं एग्जाम देकर ही सीख रही हूँ ना। रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब
0: जी
1: बंदिश, छोटा ख्याल, ढुमरी, ऐसा आता है ना, सब वो सीख
0: जी
1: रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहाग राग के वे एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जना जना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म प म ग म ग म पनी पनी।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी और आपके कार्यक्रम वो विविध भारती चलता रहता है हमारा।
0: जी, तो
1: हाँ
0: तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: ये निकलता है तो 1 बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख
1: हाँ
0: लेते
1: जी,
0: होंगे।
1: गुना में बेचते हैं मंडी पास में।
0: अच्छा। और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारती कार्यक्रम हेलो
0: जी
1: फरमाइश सखी सहेली और वो आते सेहतनामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी छिते लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा तो।
0: क्या बात है। और बताइए, अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें हैं, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है। हाँ
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो, वो और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर,
1: हाँ है 20 गोजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा
1: बहुत
0: मंदिर है
1: हाँ
0: उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है। सभी
0: जी, और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना तो। हाँ
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो
1: जी,
0: फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा प्यार की फिल्म।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहा है बिमोल बसुमतारी मैम।
0: विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है,
0: जी,
1: विविध भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी। मैं तो मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी। मैम हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं।
1: जी।
0: तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए? कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी। मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था
0: तो बकायदा कोई
1: अभी
0: कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी। उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा
0: जी,
1: इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं,
1: जी।
0: सिलाई
1: मैम
0: कोई और करता है?
1: हम खुदे सिलाई भी करता है, खुदे कटिंग करता हूँ मैम
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी। मैम मैं खुदे करता हूँ, मेरा छोटा
0: अच्छा,
1: मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम
0: अरे वाह। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी। मैम हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही
0: जी,
1: करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और आसाम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी
0: जी
1: ठीक है, और
0: जी
1: कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है।
0: बड़ा खूबसूरत सा हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें भी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी। मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है,
0: अच्छा
1: जोरहाट है, ईटानगर है, और
0: जी,
1: लखनऊ है,
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
1: जी। मैम हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए
0: तो चलिए
1: जी।
0: आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288, यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466-2, यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: पिज्जा, बर्गर्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, जंक, ये जो कुरकुरे हम खाते हैं, बाकी सारी चीजें, ये पेट के अंदर का ओबेसिटी बढ़ाता है। इसमें इस सारी चीजें कैलोरीज हैं और इसमें न्यूट्रिशन इतना नहीं है, तो पेट के अंदर फैट बढ़ने से ये, मैंने भी कहा ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ओवरीज के हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है
1: जी। डॉक्टर साहब, एक श्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने जी, आपां उहनां दा वी सवाल लै लैंदे हां। हैलो।
2: हैलो,
1: हां जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च, अपना नाम दस दिओ।
2: रिधिमा गल कर रहे हैं
1: जी। रिधिमा जी, डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुन रहे ने, की सवाल है जी?
2: सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब की पीएमओएस दी आपां गल कर रहे हां, कई बार आपां नूं जदों स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जांदा है, मेनू डॉक्टर ने यह डायग्नोस किया कि थानू स्ट्रेस करके जेडे तुहाडे हार्मोन्स इंबैलेंस होए ने ओदी करके थोड़ा जेड़ा पीरियड इरेगुलरिटीज हुई ने ते इंसुलिन थोड़ा डिसबैलेंस होया, कि ए भी एक कारण हैगा कि सिर्फ यह अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज करके गलबात हो रही है जो पीएमओएस दी
0: जवाब दिया था कि जैसे आपका स्ट्रेस ज्यादा, तो इस वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से पेट के अंदर का फैट बढ़ना ही बढ़ना, तो उस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ही होना, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, आपका वेट भी बढ़ेगा, आपको क्रेविंग मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ेगी, वेट गेन होगा, और इस इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से और प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके हार्मोन डिसबैलेंस होगा। लेकिन इसके साथ साथ डाइट की प्रॉब्लम्स भी रहती है, फिजिकल एक्टिविटी न करना, तो अपने मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आप अपना मेडिटेशन करिए, योगा करिए, डाइट को ध्यान में रखिए, अपना वेट लॉस रखिए, पेट का फैट कम रखिए, स्क्रीन टाइम कम करिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए। जैसे पहले 7 बजे खाना खा के 9 बजे तक सो जाते थे, आजकल 10-11 बजे तक हम खाना खा के सो जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट होता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल आजकल सब जानते हैं कि अच्छी नींद करना, टाइम पे सोना, अच्छा हेल्दी खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना और मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना।
1: जी, उम्मीद है रिधिमा जी तुहानूं तुहाडे सवाल दा तसल्ली बख्श उत्तर मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, एक होर श्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने जी, आपां उहनां दा वी सवाल लै लैंदे हां। हैलो।
3: हेलो,
1: हां जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च, अपना नाम दस दिओ।
3: मैडम, चरणजीत सिंह बोलदा, पिंड ढिंगड़ जिला बठिंडा जी।
1: जी चरणजीत भाई जी, डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुन रहे ने, की सवाल है जी?
3: माता जी नूं शुगर है 250-300 प्लस ही रहिंदा है
1: जी,
3: उहनां नूं जिहड़ी गोली लगी हुई है RMG दी लगी हुई है जी।
1: जी,
3: ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਹਾਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
1: ਜੀ, ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
3: ਉਮਰ ਹੈਗੀ 56 ਸਾਲ ਦੀ।
1: 56? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ,
0: तो पहली बात तो ये शुगर की प्रॉब्लम अगर जो है तो इसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। तो जो अगर वो डायबिटीज के पेशेंट है, खाली पेट 80 से 130 रखना पड़ेगा, खाने के बाद 180 से कम, सैर परहेज से एक लिमिट तक कंट्रोल होगा तो नाल दवाई की लोड पड़ेगी उनको, तो दवाई देनी पड़ेगी। अगर कंट्रोल नहीं होता तो दवाई का डोज भी सेट करना पड़ेगा। दवाई का मतलब शुगर की दवाई ऐसा नहीं है कि जिसका ज्यादा ग्राम है तो वो ज्यादा पावरफुल होगी, ज्यादा तेज होगी, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि 1000 ग्राम की दवाई है, 1000 तो इस मतलब ये बड़ी भारी दवाई है, बड़ी तेज दवाई है, बड़ी गर्म दवाई है, ऐसा नहीं है। तो ये मेटफॉर्मिन की दवाई ले रहे हो 1 ग्राम सुबह शाम, तो इसको अगर पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सुबह शाम दीजिए, कंट्रोल रखिए, तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
1: जेड़ा तुसी 300 लेवल कह रहे हो जी, वो कंट्रोल नहीं है जी, डॉक्टर साहब दे दसन मुताबिक 80 से 130 तक होना चाहिए जी, रोटी खान तो पहला, ते जदों रोटी खा ली उदों 180 तो घट होना चाहिए जी, जेकर इस तो वध है तां भी माड़ा है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰੋਂ ਕੀ ਨਸੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਰ ਮਚਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ PMOS ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ PMOS ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ?
0: अगर पहले क्या, कैसे पता चलेगा किसी लड़की को, किसी औरत को कि मुझे PMOS की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अनचाहे बाल आना, मेंसेस महावारी डिले होना, जैसे 30 दिन का साइकिल होता, अगर 40 दिन 50 दिन 2 महीने 3 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसा भी हो जाता, 5-5 महीने मेंसेस नहीं आते, तो ऐसी प्रॉब्लम, इकट्ठे फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती।

0: भी तो ऐसे हैं, बाल जड़ जाना, हेयर फॉल होना, फेस पे एक्नी, कुछ मुहासे इतने ज्यादा होते हैं तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं,
1: जी
0: ठीक है, वेट गेन होना, तो अगर ऐसे कुछ चीजें हैं यंग लड़कियों में, कॉस्मेटिक फीचर्स ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या कंसील न करना, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स होना, बहुत दवाएं ले रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, तो उन लोगों को चेकअप कराना चाहिए। या कुछ लोगों को डायबिटीज भी, शुगर भी बढ़ना स्टार्ट होता है, उनको समझ नहीं आता हमारा वेट बढ़ गया है, हमारा शुगर आना स्टार्ट हो गया, फेस पे अनचाहे बाल आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, मेंसेस डिले हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये PMOS की शिकायत हो सकती है। कुछ लोग अल्ट्रासाउंड रूटीन में करा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड कराने पे लगता है कि ओवरी में सिस्ट आ गए हैं या छोटी छोटी फॉलिकल्स आ गए हैं, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम लिखते हैं डॉक्टर साहब, तो उनको भी चेकअप कराना चाहिए। और कुछ लोग डर्मेटोलॉजिस्ट, लेजर कराने जाते हैं स्किन वाले डॉक्टर के पास, डर्मेट के पास जाते हैं, तो अगर अनचाहे बाल हैं वो करा रहे हैं, तो वहां भी उनको सोचना चाहिए कि ये हार्मोनल इश्यूज को साथ साथ में ट्रीट किया जाए, तभी उनका जो इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं वो अपने लेजर पे, तो साथ अगर हार्मोन्स को इश्यू को ठीक किया जाए तो ज्यादा फायदा रहेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत वधिया जानकारी तुसी स्रोतियां दे नाल सांझी कर रहे हो जी। ते स्रोतियो, तुहाडी जानकारी लई दसना चाहांगे कि अज साडे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान डॉक्टर सुशील कोतरू जी पहुंचे हुए ने, ते स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331 डायल करके तुसी अपना सवाल पुछ सकदे हो। असी अज औरतां दे विच जो हार्मोनल समस्यावां हुंदियां उस विषय दे संबंधी गलबात कर रहे हां, ते हुण असी इक वक्फे दे लई रुकना चाहांगे। तुसी डायल करो 0164-2240-331।
2: की वजन वधण, शुगर या हार्मोनल इंबैलेंस ने तुहाडी जिंदगी दी रफ्तार हौली कर दिती है? की PCOS या मोटापा तुहाडी सेहत ते भारी पै रहा है? घबराओ ना, हुण इन्ना सारियां समस्यावां दा पक्का अते सफल इलाज है बिल्कुल तुहाडे नेड़े। मिलो एंडोक्राइनोलॉजी अते डायबिटीज दे माहिर डॉक्टर सुशील कोटरू, चेयरमैन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एंडोक्राइनोलॉजी नाल। शुगर, मोटापा, थायरॉयड, PCOS अते हार्मोन्स नाल जुड़ी हर समस्या लई अज ही सलाह लवो। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हस्पताल, बाईपास ग्रुप ऑफ हस्पताल, मानसा रोड, बठिंडा। फोन 7431-000 एंड 0164-512-000। आज ही अपनी सेहत वाल पहला कदम बढ़ाओ। 1966 तो चल रही NAC तो दूजी वार A ग्रेड अते UGC तो ऑटोनोमस स्टेटस दा दर्जा हासिल करन वाली शहर दी एक लौती नामवर संस्था SST गर्ल्स कॉलेज बठिंडा विच चल रहे कोर्सेज BA, BCOM, BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल, CSM, BCA, BBA, BLib, PGDCA, PGD इन योगा, PGD इन बैंकिंग अते इंश्योरेंस, PGD इन वेब डिजाइन, MA इंग्लिश, हिंदी अते पंजाबी, MCOM, MSc मैथ्स, MSc IT, MBA, MCA, MSc फैशन डिजाइनिंग, अति 4 साला BA/BEd ITF विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला होस्टल, कॉम्पिटिशन सेल, NEP अनुसार 3 अति 4 साला UG प्रोग्राम्स, हर वर्ग लई स्कॉलरशिप स्कीम्स। वधेरी जानकारी लई SST गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171-59121-94175-57848-98720-65150।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: की वजन वधण, शुगर या हार्मोनल इंबैलेंस ने तुहाडी जिंदगी दी रफ्तार हौली कर दिती है? की PCOS या मोटापा तुहाडी सेहत ते भारी पै रहा है? घबराओ ना, हुण इन्ना सारियां समस्यावां दा पक्का अते सफल इलाज है बिल्कुल तुहाडे नेड़े। मिलो एंडोक्राइनोलॉजी अते डायबिटीज दे माहिर डॉक्टर सुशील कोटरू, चेयरमैन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एंडोक्राइनोलॉजी नाल। शुगर, मोटापा, थायरॉयड, PCOS अते हार्मोन्स नाल जुड़ी हर समस्या लई अज ही सलाह लवो। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हस्पताल, बाईपास ग्रुप ऑफ हस्पताल, मानसा रोड, बठिंडा। फोन 7431-000 एंड 0164-512-000। आज ही अपनी सेहत वाल पहला कदम बढ़ाओ।
4: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाने चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
5: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन

0: बार बार हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगने हैं, दवाइयां ज्यादा खानी पड़ेगी जो लोग नहीं खाने चाहते, तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी है। तो इसलिए पीएमओएस खाली मेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है, खाली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। इससे पेशेंट को आगे फ्यूचर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, यूट्राइन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हमें उनको सर्वेलेंस में फॉलोअप में रखना पड़ता है। मैंने देखा पेशेंट आ गया, उनको पीएमओएस की प्रॉब्लम थी, अब ट्रीट किया, थोड़ा वो ठीक हो गया, कॉस्मेटिक फीचर्स पर पेशेंट आता ही नहीं। फिर बाद में जब आते हैं तो लेट स्टेज में आते हैं, तो तब तक उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर्वेलेंस में रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म फॉलोअप में रहना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, एक एक करके बीमारियां बारे भी पूछेंगे। मेरे ख्याल श्रोता जो है उन्होंने आवाज या कह लिए किसी कारण करके फोन कॉल कट्टी गई है जी, खैर कोई गल नहीं। तो डॉक्टर साहब हुण आपां गल करदे हां जी, एक बार फिर तो मैं चाहांगी कि तुसीं मोटे मोटे लक्षण किहड़े किहड़े आ सकदे इस बीमारी करके, जिन्हां नूं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए लड़कियां नूं, उहदे बारे एक बार फिर तो चानना पा दिओ जी।
0: अगर मैं यंग लड़कियों की बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ना, 15 से 30 साल की एज में अगर आपके अनचाहे बाल आ रहे हैं, आपके मेंसेस जो रेगुलर साइकिल है वो डिले होना स्टार्ट हो गया है, कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या दो दो महीना, थ्री मंथ्स डिले हो जाते हैं, इसके साथ साथ वेट गेन होना स्टार्ट हो गया, क्रीनिंग ज्यादा मीठे की हो रही है, या मुहासे एक्नी ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम है और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, तो इस लक्षण जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं तो हमें इनको नजरअंदाज करते हैं, तो ये पीएमओएस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।
1: जी डॉक्टर, एक श्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने जी, आपां उहनां दा सवाल लै लैने हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: स्वागत है जी प्रोग्राम च, अपना नाम दस दिओ।
2: सतिकाल मैम।
1: सतिकाल जी, सतिकाल जी
2: जी, मेरा नाम जी मनप्रीत कौर है जी।
1: जी मनप्रीत जी, की सवाल है डॉक्टर साहब तुहाडा, गल सुन रहे हैं तुहाडी।
2: हां जी जी, मेरी उम्र जी 22 साल दी है जी, ते मेरी ए सवाल है जी डॉक्टर साहब नु जी। जी मेरी ना हड्डियां बहुत पाटदियां ने जी।
1: जी अड्डियां पाट दिया ने।
2: हां जी, ओ डरारा नहीं हुंदियां जी।
1: जी जी जी जी, कोई कोई मेंसेस नाल संबंधी कोई समस्या?
2: मेंसेस, मेंसेस जी हुण तां जी घट गए जी, पहला बहुत ज्यादा आउंदे हुंदे सी जी, मतलब कि 5-5-6 दिन रहंदे सी जी, हुण तां सिर्फ 2 दिन रहंदे जी, ते पर हुण जी मेरी वीकनेस चक्कर मतलब कि बहुत ज्यादा महसूस हुंदी है, जदों आके
1: रेडियो सेट राही जवाब सुन लो जी। डॉक्टर साहब तुहाडी गल दा जवाब दे रहे हैं जी।
0: ऐसे लग रहा है कि इनको कुछ पहले ज्यादा ब्लीडिंग रह रही थी इनका, उस वजह से इनको ब्लड लॉस हुआ होगा, एनीमिया खून की कमी होगी, अब चक्कर भी आ रहे हैं और अब मेंसेस कम हो रहे हैं, तो दैट मीन हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जिनके हार्मोनल इश्यूज रहते हैं उनमें, उनमें अगर हार्मोन्स की कमी कुछ रहती है इनमें, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं चेक करना पड़ेगा, बोन्स वीक हो सकती है, ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं ना, अगर नॉर्मल हार्मोन्स, बोन्स के लिए ईस्ट्रोजन बहुत जरूरी है, नॉर्मल साइकिल्स बहुत जरूरी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो बोन्स वीक हो सकती है, मसल लॉस, अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, जैसे विटामिन डी की डिफिशेंसी बहुत कॉमन है, 100 में से 70 लोगों को विटामिन डी की कमी है, तो चेक करना पड़ेगा, ये चीजें कम हो सकती है, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, ये सारी चीजें कमी रह सकती है।
1: डॉक्टर साहब, इन्हां गल्लां दे विचों ही एक सवाल मेरे मन च होर आ गया कि जदों आपां पीएमओएस दी गल करदे हां, कई बारी कुछ लड़कियां कहंदियां जी मेरे मेंसेस रेगुलर ने, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਸਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐਮਓਐਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ,
3: ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ
1: ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ।
3: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ?
3: ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ 160 ਦੇ ਅੱਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ?
1: ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ?
3: ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ।
1: ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
3: ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
1: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 150 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ।
0: ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਭੀ ਕੋਈ?
3: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਵਾਈ कोई नहीं ला रहे।
0: नहीं तो लेनी पड़ेगी ना आपको, खाली पेट शुगर जैसे हमने पहले ही बताया 80 से 130 के अंदर रखना चाहिए, और खाने के बाद 180 से कट रहना चाहिए, तो आपको शुरुआत दवाई करनी चाहिए, अगर आपको बड़ी तकलीफ नहीं हो, आगे कोई तकलीफ ना हो, उससे बचने के लिए इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, परहेज, सैर और दवाई नाल लोगे तो कंट्रोल में रखो इसको।
1: जी अवतार जी, प्रोग्राम जो शामिल होने लिए धन्यवाद, तो उम्मीद करते हैं कि तुहानू तुहाडे सवाल दा जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, पीएमओएस की आपां गल कर रहे सी वी मेंसेस रेगुलर ने,
0: तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक ही पेशेंट में सारी चीजें दिखेगी, हर कोई कभी कभी अल्ट्रासाउंड करके पेशेंट बता दें कि पीएमओएस है, तो पेशेंट अल्ट्रासाउंड करके मेरे डॉक्टर साहब ओरी में सिस्ट नहीं आ रही है, तो अब ऐसा ऐसा नहीं है, हर किसी सारे पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड

0: सिस्ट आ जाए और सारी पेशेंट्स में मेंसिस डिले हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तीन क्राइटेरिया में दो क्राइटेरिया भी हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में कुछ लोगों को नहीं आते हैं, लेकिन अगर हर सिचुएशन बोलते हैं फेस पे अनचाहे बाल आना, मुहासे होना या हेयर फॉल होना और साथ में डिले मेंसिस होना, ये दो अगर हो सकते हैं तो इसमें भी क्राइटेरिया में फिट करते हैं। तो अलग अलग फिनोटाइप होते हैं, तो कभी कुछ लोगों को मेंसिस डिले ना होके बाकी प्रॉब्लम्स आ सकती, बाकी सिम्टम्स आ सकते, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ सकती और साथ में ब्लड टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो लेवल ज्यादा हो सकता है। और जो हर सिचुएशन मैंने बताया कि उनके अगर फेस पे ऐसा लग रहा है कि चिन पे, फेस पे, चेस्ट पे, आर्म्स पे बाल आ रहे हैं तो उनमें भी पीसेस फिर भी हो सकता है। और ब्लीडिंग जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, कोई और रीजन अलग भी हो सकता है साथ में जिससे ब्लीडिंग की इश्यूज हो सकते हैं, यूट्रस में कोई और इश्यूज भी हो सकते हैं, बस स्टिल पीसेस इन पेशेंट्स में भी हो सकता है भले उनको मेंसेस की कोई प्रॉब्लम ना भी हो।
1: जी डॉक्टर, एक और श्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम।
2: हेलो
1: जी, स्वागत प्रोग्राम च, अपना नाम दस दो भाई जी। समस्या की है जी, हुण ओनु समस्या की है, हुण की समस्या उसनु हुण उसनु की समस्या है, की प्रॉब्लम है? हां जी हां जी, हुण की दिक्कत आउंदी है जी? मेरे ख्याल जी डॉक्टर साहब इन्हां तक आवाज है जिहड़ी किसी कारण करके अपनी नहीं पहुंच रही। यह कह रहे हैं कि 15-16 साल का इन्हां दा बच्चा है, उसनू समस्या है, सो तुसी कृपा करके जानकारी दिओ भी मेरे ख्याल इन्हां दे घर दे विच बच्चे नू समस्या है तो किवें उहदा ध्यान रखण के बच्चा ठीक रहे।
0: ये बहुत जरूरी है कि अलग अलग किस्म का डायबिटीज होता है। एक जैसे आप आम डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं जिसमें दवाइयां गोलियां काम करती है और टाइम नाल कभी कभी उनमें भी इंसुलिन लगने की लोड पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। इनका बच्चों का डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन ही बनता, तो इंसुलिन जो रब ने बॉडी में दिया है जिससे शुगर लेवल में रहता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में ही तब्दील होता है और वो ग्लूकोज बॉडी इस्तेमाल तभी करेगी जब इंसुलिन बनेगा। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो बाहर देना पड़ेगा, वैसे देना पड़ेगा जैसे भगवान ने बॉडी के अंदर, उसको हम बाहर से देने की कोशिश करते हैं। तो एक इंसुलिन अलग से देना पड़ेगा जो खाली पेट का निर्णय कर जाएगा, शुगर कंट्रोल करेगा, और दूसरा इंसुलिन अलग से देना पड़ेगा जो खाने के साथ देना पड़ेगा, शॉर्ट एक्टिंग है। तो उनको प्रॉपरली एक्सपर्ट जो है शुगर के उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपरली इंसुलिन बाहर से देंगे और बच्चे का शुगर स्टेबल रखेंगे तो उनका बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल सेफ रहेगा। बट इंसुलिन के बदले इंसुलिन देना पड़ेगा, टेबलेट काम नहीं करेगी, टाइप 1 डायबिटीज है। और तीसरा डायबिटीज होता है पैनक्रियाटाइटिस, टाइप 3C डायबिटीज बोलते हैं। किसी ने शराब पी के पैनक्रियाज डैमेज हो गया, किसी वजह से पैनक्रियाज में कोई खराब बीमारी आ गई, कैंसर की, उसको निकालना पड़ा या कोई भी पैनक्रियाज डैमेज हो गया, तो वो टाइप 3C है। पैनक्रियाज काम नहीं करेगा तो उनमें ना तो इंसुलिन बनता है ना तो एंजाइम्स बनते, तो इंसुलिन बारू देना पड़ता है और एंजाइम की टेबलेट देनी पड़ती है। तो अलग अलग किस्म का डायबिटीज है। बट बच्चों वाला डायबिटीज में टाइप 1 में सबको यही बताना चाहूंगा, जागरूक करना चाहूंगा, उसमें टेबलेट्स काम नहीं करेगी। जो चीज रब ने बॉडी के अंदर बनाई अगर वो नहीं बन रही है वो बाहर से हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, उसके बगैर और कोई चारा नहीं।
1: जी ते डॉक्टर साहब जदों आपां गल करदे हां जी PMOS दे जांच दी, तां तुसीं कृपा करके स्रोतियां नूं जानकारी दिओ वी कीड़ियां जांचां सानूं करवाउणियां चाहीदियां ते कदों करवाउणियां चाहीदियां, क्योंकि बड़ा ट्रेंड दे विच है कि हर कोई चाहुंदा है जी मैं साल बाद अपने सारे टेस्ट करा लैणा जी, की ओह बरतारा, क्योंकि तुसीं मेडिसिन दे डॉक्टर वी हो, ठीक है, या फिर सिर्फ ते सिर्फ डॉक्टर दी सलाह नाल ही जांचां करवाउणियां चाहीदियां ने?
0: नहीं, सबको सारे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अगर ऐसे टेस्ट कराते जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा, ये खर्चा इतना ज्यादा बर्डन पड़ता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, सामने देखना पड़ता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट किसको कराने की जरूरत है। जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादा कराने की जरूरत है। अगर पेशेंट कोई आएगा कि वेट गेन हो रहा है, फेस पे अनवांटेड फेशियल हेयर है, हेयर फॉल हो रहा है, मैसेज डिले हो रहे हैं, तो उनको टेस्ट कराने चाहिए। तो हर किसी लड़की को हम टेस्ट नहीं करवाते, तो कॉमन टेस्ट जो करवाना चाहिए, जो खाली पेट करवाना चाहिए, उसमें हम टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाते हैं, डियाज होता है, DHE ASDIAS लेवल कराते हैं, और फास्टिंग शुगर के नाल फास्टिंग इंसुलिन चेक कराते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो अगर उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं और मेंसेस डिले हैं तो अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। तो मुझे लगता है क्लिनिकली हम डायग्नोज कर पाते हैं पेशेंट को, या डॉक्टर साहब के पास कंसल्टेशन लेने आते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर चेकअप, 70% डायग्नोसिस तो उसी से होता है, तो टेस्ट हमें हेल्प कर लेते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट करवाने जरूरी है। बाकी हमें PCOS लेबल करने या PMOS लेबल करने से पहले बाकी चीजें हमें वो करना पड़ता है, रूल आउट करना पड़ता है। तो अगर कोई पेशेंट आ जाता हमारे पास, मेरे मेंसेस डिले हो रहे हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही कंसीव नहीं, पहले थायराइड चेकअप होना जरूरी, वो कॉमन है, TSH, प्रोलैक्टिन लेवल होना जरूरी है। तो कोई और

0: प्रॉब्लम ना हो, जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको हम मिस ना करें, हम PMOS करके ट्रीट करें और हम थायराइड को मिस करें, प्रोलैक्टिन लेवल को मिस करें, तो वो हमें बेसिक चीजें पहले देखनी पड़ती है। तो बट पहले पेशेंट को चेकअप और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कोई भी बिना वजह टेस्ट कराने को कोई मतलब नहीं।
1: जी, ते स्रोतियां दी जानकारी लिए दसना चाहांगे कि स्टूडियो दी घड़ी ते समां 6:01 ते 12 सेकंड दा हो गया है जी, ते असी एक वक्फे दे लई रुकना चाहांगे, तुसी डायल करो 0164-242-3031 स्टूडियो दा नंबर, ते असी वापस आने हैं जी वक्फे तो बाद।
2: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लो।

0: तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: कि वजन वदन, शुगर या हार्मोनल इम्बैलेंस ने तो हड्डी जिंदगी दी रफ्तार हौली कर देती है, कि पीसीओएस या मोटापा तो हड्डी सेहत ते पारी पै रहा है। घबराओ ना, हुण इन्ना सारिया समस्यावां दा पक्का अते सफल इलाज है बिल्कुल तुहाडे नेड़े। मिलो एंडोक्राइनोलॉजी अते डायबिटीज दे माहिर डॉक्टर सुशील कोटरू, चेयरमैन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एंडोक्राइनोलॉजी नाल। शुगर, मोटापा, थायरॉयड, पीसीओएस अते हार्मोन्स नाल जुड़ी हर समस्या ले आज ही सलाह लवो। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हस्पताल, बाईपास ग्रुप ऑफ हस्पताल, मानसा रोड, बठिंडा। फोन 7431000 एंड 0164512200। आज ही अपनी सेहत वाल पहला कदम बढ़ाओ।
2: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
3: हुण तुसी भी मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% एलटीवी ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
2: तो अज विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
4: टोल फ्री नंबर 1800420223।
1: वजन वदन, शुगर या हार्मोनल इम्बैलेंस ने तो हड्डी जिंदगी दी रफ्तार हौली कर देती है। कि पीसीओएस या मोटापा तो हड्डी सेहत ते पारी पै रहा है। घबराओ ना, हुण इन्ना सारिया समस्यावां दा पक्का अते सफल इलाज है बिल्कुल तुहाडे नेड़े। मिलो एंडोक्राइनोलॉजी अते डायबिटीज दे माहिर डॉक्टर सुशील कोटरू, चेयरमैन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एंडोक्राइनोलॉजी नाल। शुगर, मोटापा, थायरॉयड, पीसीओएस अते हार्मोन्स नाल जुड़ी हर समस्या ले आज ही सलाह लवो। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हस्पताल, बाईपास ग्रुप ऑफ हस्पताल, मानसा रोड, बठिंडा। फोन 7431000 एंड 0164512200। आज ही अपनी सेहत वाल पहला कदम बढ़ाओ।
5: वक्फे तो बाद एक बार फिर श्रोतियों तुहाडा सारयां दा स्वागत। डॉक्टर अज साडे नाल जुड़े हुए ने जी, माहिर मेहमान डॉक्टर सुशील कोतरू जी, ते एक डॉक्टर साहब श्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े जी, आपां उहनां दा सवाल लै लईए। हैलो,
6: सत श्री अकाल मैडम
5: जी। सत श्री अकाल बाई जी, अपना नाम दस दिओ।
6: मैं मलकीत बोलदा फराले पिंड तों मैडम
5: जी। मलकीत बाई जी, डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुन रहे ने, की सवाल है जी?
6: ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਗਰ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ 112-110 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ।
7: ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ
5: ਜੀ? ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ?
7: अगर ऐसा सुस्ती या नींद किसी पेशेंट को ज्यादा आ रही है दिन में, तो एक तो देखना पड़ेगा थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो थायराइड चेक कराना चाहिए। और रात को सोते हुए कोई खराड़े स्नोरिंग तो नहीं ले रहे, इनका वेट ज्यादा तो है नहीं, और नेजल ब्लॉकेज नहीं, नाक में अंदर हड्डी बढ़ जाती है या रेशा बनने की वजह से, एलर्जी की वजह से अगर रात को सोने के टाइम नाक बंद हो जाती है और खराड़े लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उन पेशेंट्स को दिन में सुस्ती, थकान, एनर्जी नहीं रहती
5: जी।
7: बाकी इनको अपना डाइट भी देखना चाहिए, हैवी खाना नहीं खाएं और अपना और चेकअप कराएं कि कोई वो रीजन ना हो इनका जो सुस्ती थकान रहती है, नींद ज्यादा आती है, और कोई चेकअप नहीं। थायराइड तो कॉमन देखना है और स्नोरिंग दूसरा
5: जी। तो डॉक्टर साहब हुण आपां क्योंकि पीएमओएस की गल कर रहे हैं, हुण अखीरले पड़ाव वल वधदे हैं, हुण तुसीं कृपा करके जानकारी दिओ श्रोतियां नूं भी इलाज किवें कर सकदे आपां पीएमओएस दा।
7: देखो, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, एक शादी से पहले इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो उस टाइम हम मेंसेस को रेगुलर करने की कोशिश करते हैं, हॉर्मोन्स को रेगुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फेस के जो कॉस्मेटिक फीचर्स, तब लड़कियां कंसर्न होते हैं जो अनचाहे बाल हैं, फेस का जो सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हेयर लॉस होता है, तो और वेट गेन, तो उस पे काम करते हैं। हमारे पास इतना अच्छा ट्रीटमेंट आया है वेट लॉस के लिए, हम देखते हैं आज एक लड़की आई है तो उसका 38 kg वेट लॉस किया उन्होंने 7 मंथ्स में, तो उनका रिवर्स हो गया सारे हार्मोनल इश्यूज, डायबिटीज रिवर्स हो गया, उनको डायबिटीज भी था, यंग लड़की 22 साल की। तो ये क्या, हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, पहले डाइट एक्सरसाइज से लिमिट तक वेट लॉस कर पाते थे, लेकिन आजकल हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने आ गए हैं जो आजकल हम बोलते हैं विगोवी, ओजेम्पिक, मंजारो, ये बहुत आजकल चल रहा है कि वीकली हर हफ्ते इंजेक्शन लगता है। तो वेट लॉस करने के बाद, क्योंकि वेट जितना ओबेसिटी ज्यादा रहेगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उतने हार्मोनल इश्यूज रहेंगे,

0: वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत नंबर वन, फर्स्ट बॉडी तो यही है कि अपने डाइट में हम जो कस्टमाइज डाइट बताते हैं बनाते हैं वैसा बनाते हैं जो पेशेंट अमल करेगा। एक्सरसाइज प्लान मैंने बताया कि सैर करने के साथ साथ, वो सैर नहीं टहलने से नहीं होगा, विग्रेस एक्सरसाइज रहता है, ब्रिस्क वॉकिंग होता है, नाल उसके साथ मसल एक्सरसाइजेस भी करनी जरूरी है। और थर्ड नंबर पर मेडिकल ट्रीटमेंट, मैंने कहा कि शादी करने से पहले कॉस्मेटिक फीचर्स के लिए हम अलग से मेंसेस रेगुलर करने का ट्रीटमेंट और ओसीपीज ट्रीटमेंट दे देते हैं। और जब पेशेंट की शादी होती है ना, वो आगे फैमिली के लिए जाना चाहते तब इसका ट्रीटमेंट अलग करना पड़ता है। और हम ये भी देखते हैं पेशेंट्स में कभी कभी आईवीएफ के लिए भी एडवाइस करना पड़ता है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई करेगा तो हो सकता है आईवीएफ की जरूरत ही ना पड़े। और जब फैमिली कंप्लीट होने के बाद फिर हमें ये भी, मैंने कहा ना कि इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लिपिड प्रोफाइल, तो वो मॉनिटर करना पड़ता है। अगर हमारा डायबिटीज हो गया तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसकी टेबलेट देनी पड़ती है। फैटी लिवर बहुत कॉमन होता है और लिवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण अल्कोहल नहीं है, हेपेटाइटिस बी या सी जिसको काला पीलिया भी बोलते हैं वो नहीं है, फैटी लिवर है, लोग नहीं समझते, तो वो चीज है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि फैट सेंट्रल एरिया में पेट के अंदर ही ज्यादा आ जाता है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। मींस आपको पेशेंट को हार्मोन्स को रेगुलर करना है, मेंसेस को रेगुलर करना है, यूट्राइन कैंसर से बचाना है, डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करके रिवर्स करने की कोशिश करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, हार्ट डिजीज से बचाना है। तो ये शादी से पहले अलग ट्रीटमेंट है, शादी के बाद अगर फैमिली करना तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, और फैमिली कंप्लीट करने के बाद ट्रीटमेंट अलग प्लान होता है। बट सर्वेलेंस लाइफ कंटिन्यूस रहना चाहिए। मीनोपॉज के बाद जब मेंसेस बंद होने के बाद भी हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट का वेट नहीं बढ़ने देना है, और सर्वेलेंस में देखना पड़ता है कि कोई बीमारी नाल जो हो सकती है मेटाबॉलिक डिजीज उसको प्रिवेंट करना।
1: जी ते डॉक्टर साहब, हुण क्योंकि देखो आप जिन्नी भी हुण तक गलबात की है उहदे विचों एक गल सामने आई है, ओबेसिटी यानी मोटापा सब तो वड्डी समस्या, बहुत साडे बच्चे भी इस चीज दे नाल जूझ रहे ने, औरतां दे विच भी बहुत ज्यादा, मर्दां दे विच भी है, बजुर्गां दे विच भी, मतलब कोई भी तबका कोई भी उम्र ग्रुप इस तो बचिया नहीं। तां तुसीं कृपा करके साडे स्रोतियां नूं जानकारी दिओ भी ओबेसिटी दी जिहड़ी बीमारी हुंदी है की हुंदी है, इहदे पिछे की कारण हुंदे आ, ते इहदे तों असीं किवें बच सकदे आ।
0: ओबेसिटी तब बोला जाता है जब हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। अगर हाइट के हिसाब नाल वेट ज्यादा हो रहा है तो उसका एक फॉर्मूला होता है बीएमआई, तो बीएमआई अगर एक लेवल से ज्यादा है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो नॉर्मली ये बीएमआई 23 हेल्दी माना जाता है, 23 से 28 तक ओवरवेट, उसके बाद ओबेसिटी माना जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब नंबर वन स्टेट्स में ये भी आता है ना, जिसमें ओबेसिटी ज्यादा है,
1: क्योंकि पंजाबी खान पीन करके मशहूर ने जी।
0: हाँ, पहले काम भी बहुत करते थे लेकिन आजकल मशीनरी आ गई है, और हम पहले नेचुरल खाना खाया करते थे, आजकल अब बहुत ज्यादा होटल्स रेस्टोरेंट्स और ये काम बिल्कुल कम हो गया है, वो सारी चीजें होगी, गाड़ियां बहुत ज्यादा आ गई, पहले कितना साइकिलिंग होता था, कितना चलते थे, आजकल बहुत कम हो गया, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ओबेसिटी में ये पंजाब और हमारे रूरल बैकग्राउंड से, गांव से, पिंडा से जो जड़े लोग आते हैं वहां भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: तो ओबेसिटी मैंने कहा जैसे बीएमआई हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, और नाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कमर जो हम देखते हैं ना वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये नॉर्मली 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए फीमेल्स में, मेल्स में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर हमारा वेट ज्यादा भी नहीं लेकिन कमर हमारा कमरा बन जाता है, वेस्ट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब पेट के अंदर फैट ज्यादा है। तो ये ओबेसिटी हम सब मानते थे भाई खाते पीते घर के लोग हैं, बट हम ये खाते पीते घर के नहीं, ये बड़ी सबसे बड़ी बीमारी है
1: जी।
0: तो ओबेसिटी एक सीरियस डिजीज माना गया है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक मीन लंबी बीमारी है और रिलैप्सिंग डिजीज है, वेट कम करके वापस आ जाता है
1: जी।
0: तो इसको ट्रीट करना वैसी जरूरी है जैसे बाकी बीमारियों को ट्रीट करना, क्योंकि अगर ओबेसिटी को ट्रीट नहीं करते हम टाइमली तो 240 बीमारियों का जड़ यही है
1: जी।
0: आप ओबेसिटी जिस पेशेंट को है, लिवर खराब होने के साथ साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, 20 तरह के कैंसर्स, स्नोरिंग, आप सांस फूलना, जोड़ों की बीमारियां होना, घुटने खराब हो जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना, मतलब आप बीमारी का नाम लो और ओबेसिटी जड़ है। तब ज्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मेरे पास फैटी लिवर है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, अब इन सब प्रॉब्लम्स की दवाई लिखो, मैं चलता हूँ, सांस फूलता है मेरा, रात को मैं अखराड़े में, मेरी वाइफ है, मेरे साथ सारे लोग, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सब चीजों की दवाई लिखते हैं, तो ये दवाइयां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, बट अंडरलाइन जड़ को ठीक नहीं करते। हमें अगर वेट लॉस का करेंगी, उनकी मसल मास बढ़ाएं, फैट लॉस कम करें, हम रिवर्स कर सकते हैं
1: जी। इस बारे विस्तार से जानकारी लवेंगे, एक श्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े है, पहला उन्होंने सवाल ले लिए। हेलो, हां जी स्वागत है जी प्रोग्राम च, अपना नाम दस दौ।
2: दौड़ी खाना ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਆ।
1: ਹਾਂਜੀ।

0: ਬਾਈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੈਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਓਬੈਸਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 38 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ ਗਾ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
1: ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੈ। ਏਕਦਮ ਇਤਨਾ ਵੇਟ ਲਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਕਿਆ ਹੈ, ਵੋ ਡਾਇਰੈਟਿਕਸ ਹੋਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਤੇ ਬਾਡੀ ਸੇ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ ਡਾਇਟ ਹਮ ਬਤਾ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਥੋੜਾ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟ ਲਾਸ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਹਮੇ ਮੰਥਲੀ 2-3 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਮੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਬ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਹਮਾਰੀ ਮਸਲਸ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹਮੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਇਟ, ਡਾਇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਡਾਇਟ ਮੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮਸਲਸ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो ये जरूरी है कि मसल लॉस भी ना हो, तो हमें पेशेंट का प्रोटीन जो नॉर्मल प्रोटीन है बोलते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी में 1.2 ग्राम बढ़ाना पड़ता है, नाल पेशेंट को मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जैसे मैंने कहा डंबल उठाना, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस अलग अलग तरीके की बतानी पड़ती है, और पेशेंट का जो वेट लॉस है वो अंडर सुपरविजन रखना पड़ता है। ये सारी प्रोपोगंडा वाली चीजें हैं जो भी हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, टेस्टेड टाइम टेस्टेड ट्रायल्स और स्टडीज हुई है कैसे वेट लॉस करती, किस डोज में चालू करनी, कब डोज बढ़ानी, कब तक इसको इस्तेमाल करना है, और इसके बारे में जानकारी किसी किसी पेशेंट को अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम सुपरविजन में यूज करते हैं, किस पेशेंट को कब ये बंद करने की लोड है या चेंज करने की जरूरत है
0: जी। तो ये सब एक स्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े, आप उन्हां दा भी सवाल ले लिए। हेलो,
2: हेलो, सत श्री अकाल
0: जी। सत श्री अकाल भाई जी, अपना नाम दस दियो।
2: मेरा नाम जसविंदर है जी।
0: जी जसविंदर भाई जी, डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुन रहे ने, की सवाल है जी?
2: हां जी, एक तां मैनूं काला पीलिया जी बी पॉजिटिव हैगा जी,
0: जी
2: ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਜੀ,
0: ਜੀ
2: ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਨੀ 70,000 ਪਹਿਲੇ
0: ਜੀ,
2: ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
0: ਜੀ।
2: ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ?
0: ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਬਾਈ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ?
2: ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 87 ਕਿਲੋ।
0: 87, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
2: ਉਮਰ 56 ਜੀ।
0: 56 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ।
1: इनका हिपेटाइटिस भी है ये बता रहा ना,
0: और कह रहे हैं कि इनका
1: सेल काटा है और प्लेटलेट कम, इनका हिपेटाइटिस बी की वजह से सिरोसिस हो जाता है ना, जैसे लिवर सिकुड़ जाता तो उसकी वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, और वैसे भी लिवर सिरोसिस में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो 70,000 है इनके प्लेटलेट्स, तो वो तो प्लेटलेट्स तो कम ही रहेंगे इनकी, उसकी उसकी कोई ये नहीं है, बट इनको रिस्क है ब्लीडिंग का, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी दवाइयां जो दर्द की गोलियां या कोई ऐसी खून पतला करने की दवाइयां ऐसी ना लो कि एस्पिरिन डिस्प्रिन या कोई दर्द की गोलियां, जो एक्सेप्ट पैरास्टामोल लेनी है कि ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाए। अब आपने कहा खून गाढ़ा है, संगना है, आपका वेट भी ज्यादा लग रहा है मुझे, हाइट हाइट तो आपने बताई नहीं, 87 केजी, फैट कम रहना चाहिए, वेट नहीं बढ़ना चाहिए इनको। कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की गोली कोई ऐसा नहीं है कि वो खून पतला करेगी, ये गलत फहमी है, गलत धारणा है। तो हाँ, डिस्प्रिन एस्पिरिन इस तरह की चीजें ना इस्तेमाल करें, पेन किलर्स इस्तेमाल ना करें, देसी दवाएं इस्तेमाल ना करें, बुखार दर्द के लिए पैरास्टामोल गोली कभी कभार ले सकते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल की गोली चालू कर सकते हैं अगर खून गाढ़ा है, संगना है, और अपना फैट वेट को मेंटेन करें, कम रखें वेट को।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से तुसी साडे स्रोतियां नूं जानकारी दित्ती, ते साडे कोल 2 मिंट दा समा बाकी बचिया जी, अपनी अज दी इस गलबात नूं अगर विस्तार जो असी कीता इन्ना उस नूं अगर तुसी कुछ शब्दां दे विच स्रोतियां नूं जांदे जांदे चलदे चलदे एक संदेश दे रूप दे विच कहना होवे तां की कहना चाहोगे जी?
1: मेरे कहने का मकसद है कि आजकल जो हरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो सारी महामारी हो बीमारियों की है, भले PMOS है, भले ओबिसिटी है, भले डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कम एज में हार्ट अटैक्स है, कैंसर्स है, ये सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह से हैं, लाइफस्टाइल जो खराब हो चुका है उस वजह से है, उसमें आप हमारा खान पीन जो गलत हो चुका है उसमें हमें सुधार करना जरूरी है। उसके लिए खाली दवाइयां नहीं, हमारे सेंटर पे आने के बाद कोशिश करते हैं, हमारी डाइटिशियंस की टीम है, पेशेंट का खान पीन कैसे सुधार सकते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, भले सीढ़ियां चढ़ना हो, साइकिलिंग करना हो, रनिंग करना हो।

0: वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हो, जिमिंग हो, वो बता देते हैं। नंबर थर्ड पे जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की लोड है, वो ट्रीटमेंट आदत नहीं जरूरत है, जिस ट्रीटमेंट से आगे की जिंदगी सौखी रहेगी, कॉम्प्लिकेशन फ्री रहेगी, लॉन्जिविटी भी रहेगी और कोई नुकसान नहीं हो। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट्स अपने शरीर के बारे में समझें और समय पर सही इलाज करें, ना कि सारे शरीर को माडा करके। जो सारे कुल पेशेंट्स आते हैं एडवांस स्टेज में, उस स्टेज में बहुत पैसा भी लगता, बहुत बीमारियां हो चुकी होती है, फिर हमें लगता है डॉक्टर महंगा है। डॉक्टर महंगा नहीं, बीमारियां महंगी हो चुकी है। इसलिए समय पर चेकअप कराने आना चाहिए और अपने शरीर से बढ़कर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई प्लॉट नहीं है, कुछ नहीं। शरीर चंगा तो सब चंगा, तो ही अपनी जिंदगी बढ़िया रहेगी। तो अपने शरीर के बारे में सोचिए, उसका ध्यान रखिए और आगे की जिंदगी सौखी रहेगी, बढ़िया रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया रहेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार सहित साडे श्रोतियां नू इस मंच राही जानकारी देने दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सर।
0: थैंक यू खुशविंदर मैम, और मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगा बलजीत शर्मा जी का, जिन्होंने मौका दिया पेशेंट्स को जागरूक करना इन कॉमन डिजीजेस के बारे में, जो बहुत ही महामारी रूप का धारण कर चुकी है।
1: जी ते श्रोतियों, तुहाडी जानकारी लई दसना चाहांगे कि अज साडे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान डॉक्टर सुशील कोतरू जी पहुंचे हुए सी, जो कि सिडना हस्पताल बठिंडा विखे अपनियां सेवावां निभा रहे ने। डॉक्टर साहब चेयरमैन ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटीज एंड ओबेसिटी एंड प्रिंसिपल मैडिकल एडवाइजर ने पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दे। साडा जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है जी, इह पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दे वल्लों स्पॉन्सर कीता गया सी। और डॉक्टर साहब MBBS MD मेडिसन ने, और इस तों इलावा इन्हां ने PG डिप्लोमा और मास्टर्स कीती हुई है एंडोक्राइनोलॉजी दे विच, और फैलोशिप है इन्हों डायबिटिक मैनेजमेंट के और डायबिटिक फुट के स्पैशलिस्ट ने, माहिर ने। सो डॉक्टर साहब एक बार फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: थैंक यू मैम, धन्यवाद
1: जी। तो इस दे नाल ही स्रोतियो असी तकनीकी टीम का धन्यवाद करते हुए, तो साडे विशेष सहयोगी सतपाल बराड़ जी का धन्यवाद करते हुए, तो प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी का धन्यवाद करते हुए अज का प्रोग्राम हैलो डॉक्टर, मैं यानी कि खुशप्रीत शेरगिल, इत्थे ही समाप्त करने के लिए तुहाडे तों चाहांगी आग्या। नमस्कार।

करोड़ रुपए तो वाधी रकम जारी। रक्षा सेवावां भलाई मंत्री श्री महेंद्र भगत ने चंडीगढ़ विखे पंजाब एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन दे कामकाज की समीक्षा की। गुरदासपुर पुलिस वालों 6 व्यक्ति हथियारा ते कार समेत गिरफ्तार। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि हुण ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट AITP सड़क आवाजाई अते शाहरा मंत्रालय के अधिकारित पोर्टल परिवहन राही बिनेकारां नूं सीधे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

0: पुलिस ने गुप्त सूचना ते कार्रवाई करते हैं छापेमारी की थी। दाणा मंडी पनियाड़ नेड़े एक चार पहिया वाहन विचों छह व्यक्तियों हथियारों समेत काबू कर लिया। इन्हों व्यक्तियों की पछाण कर ली गई है। पुलिस वालों मामले की अगलेरी तफ्तीश की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि मुलजम किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में सन और उन्होंने होर कि अपराधिक संबंध ने। पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी चंडीगढ़ की जलंधर शाखा वालों अमृतसर में अच वार्तालाप नां दी मीडिया वर्कशॉप कराई गई, जिस विच केंद्र सरकार दीआं योजनावां दी लोक भलाई विच भूमिका विषय ते वख वख विभागां दे अधिकारियों वालों पत्रकारां नाल चर्चा की गई। वर्कशॉप दौरान अमृतसर विच राष्ट्रीय शाहरा बुनियादी ढांचे के प्रसार विच नए भारत की राष्ट्रीय शाहरा अथॉरिटी NHAI की भूमिका विषय ते चर्चा करते हुए विभाग के टेक्नोलॉजी मैनेजर जसप्रीत ने दसिया कि NHAI के अमृतसर दफ्तर हेठ सड़की बुनियादी ढांचे नाल संबंधित 595 किलोमीटर के करीब 5,668 करोड़ रुपए की लागत के 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 9 प्रोजेक्ट का काम काज मुकम्मल हो चुका है। उन्हें दसिया कि राष्ट्रीय शाहरा उत्ते सफर करदिया किसी भी तरह की एमरजेंसी सहायता लिए राष्ट्रीय शाहरा हेल्पलाइन 1033 उत्ते 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लो, 1033। सेहत ते परिवार भलाई विभाग के जिला मास सिख्या ते सूचना अफसर डॉक्टर अमरदीप सिंह ने राष्ट्रीय सेहत मिशन दीआं योजनावां दी लोक भलाई विच भूमिका विषय ते विचार सांझे करते हुए कहा कि मिशन तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना अते टीकाकरण समेत अनेक प्रोग्राम लोगों नूं चंगीआं सेहत सहूलतां मुहैया करवाउण विच अहम भूमिका निभा रहे ने। गुरदासपुर के सबका जिला गाइडेंस काउंसलर परमिंदर सिंह सैनी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान विषय से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी कौम का असल सरमाया उसके नौजवान ने, इसलिए खासकर नौजवान वर्ग का नशा तो मुक्त होना बेहद लाजमी है। श्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का दृष्टिकोण इसे नौजवान शक्ति की असीम समर्था से टिकया हुआ है। भारत सरकार दिया समाजिक सुरक्षा योजनावां बारे अमृतसर जिला लीड बैंक मैनेजर अपर्णा शर्मा ने केंद्र सरकार वालों आम नागरिकों की माली सुरक्षा लिए चलाईया जा रही प्रमुख बीमा ते पेंशन योजनावां बारे जानकारियां सांझियां करदिया कहा कि इन्हां दा लाभ लैण लई नेड़ले बैंक जां डाकखाने जाके जानकारी हासिल कीती जा सकती है। गुरु अंगद देव वैटनरी और एनिमल साइंसिज यूनिवर्सिटी लुधियाना के सेंटर फॉर वन हैल्थ को भारत सरकार के विज्ञान और तकनोलॉजी मंत्रालय की नैशनल काउंसिल फॉर साइंस और तकनोलॉजी कम्यूनीकेशन तो 26 लाख रुपए की खोज ग्रांट प्राप्त हुई है। इस प्रोजेक्ट तहत पशुपालन और वैटनरी विज्ञान प्रति जागरूकता और समझ को बेहतर बनाने लिए तकनोलॉजी की वरतों करके पशुपालक और वैटनरी विद्यार्थियों आम जनता लिए सरल से सीखने के विहारक अनुभव को दर्शाया जाएगा। आखिर च खास खबर, पंजाब सरकार वालों ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट सड़क आवाजाई और शाहरा मंत्रालय के अधिकारित पोर्टल परिवहन राही बिनेकारा सीधे ऑनलाइन जारी किए जाने का ऐलान। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने स्वैच्छित खूनदानियों ते नौजवानों अगे आउण ते अंगदान लई प्रण लैण दा सद्दा दिता। साडे बुजुर्ग साडा माण मुहिम तहत बुढ़ापा पेंशन स्कीम च माली साल 2026-27 दौरान हुण तक 1,785 करोड़ रुपए तो वध की रकम जारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: ओ रीमा, सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मन्या जदों प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैं प्रधानमंत्री जी दे कहण ते सोलर पैनल लगवाया, हुण मेरा बिजली दा बिल जीरो आया। तुसी भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करो, pmsuryaghar.gov.in।
4: घर घर सूर्य घर।
5: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रादेशिक खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। तुसी ट्यून कीता है आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR। स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो रहा है जी 6:30 ते हुण वेला है जी युवा साथियों दे प्रोग्राम युववाणी दा। पेश है प्रोग्राम युववाणी।

0: ਹਾਂਜੀ
1: ਵਾਹ।
0: ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਤੋ, ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
2: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
4: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
3: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
5: टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन HIV किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ, FM ਬੈਂਡ 101.1 MHz ਤੇ।

0: 1-800-420-220-2233।
1: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल, और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
3: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन, ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
2: तो अज विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
0: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

नमस्कार, ये आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सुप्रीम कोर्ट वालों जंतर मंतर मुजारियां च पुलिस ते सुरक्षा मुलाजमां वालों जरूरत तो ज्यादा ताकत की वरतों ते पुलिस मुलाजमां विरुद्ध हिंसा दे इल्जामां दी जांच लई 5 मैंबरी उच्च अधिकार प्राप्त जांच कमेटी दा गठन। भारत ते जापान विचकार रक्षा भाईवाली नूं होर मजबूत करन लई सहमती। समुद्री सुरक्षा सहयोग ते एक समझौता पत्र ते दस्तखत। सरकार ने अज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर नूं अज देश का 23वां राष्ट्रपति चुनिया गया। यूआईडीआई के आधार ऐप ने 5 करोड़ डाउनलोड के अंकड़े नूं पार किया। हुण खबरां विस्थार नाल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही विच दिल्ली विच मुजाहराकारी विद्यार्थियों विरुद्ध पुलिस अते सुरक्षा मुलाजमान वालों जरूरत तो ज्यादा ताकत की वरतों अते पुलिस मुलाजमान विरुद्ध हिंसा के दोषों की जांच लई साबका जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अगवाई विच 5 मैंबरी उच्च अधिकार प्राप्त जांच कमेटी का गठन किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत अते जस्टिस जॉय माल्या बागची अते वी मोहना की बेंच ने कहा कि कमेटी विच पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के साबका मुख जज जस्टिस रविशंकर शाह, दिल्ली हाईकोर्ट के साबका जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, सीबीआई साबका डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला अते मेघालय दे सेवा मुक्त डीजीपी एल आर बिश्नोई भी शामिल होणगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहुत ज्यादा सावधानी के कारण उच्च अधिकार प्राप्त जांच कमेटी की जांच एक बार की प्रक्रिया नहीं होगी। अदालत ने कमेटी नूं कहा कि वह मुद्दों का लगातार अते समय समय से जायजा ले अते आपसी अंतरिम रिपोर्ट समय समय से सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिता कि उच्च अधिकार प्राप्त जांच कमेटी कुछ मुद्दों नूं तरजीह देवे जिन्हां विचों सब तो अहम औरत मुजाहराकारियां विरुद्ध निशाना लाके कीती हिंसा परेशान करन अते छेड़छाड़।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ, FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
5: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान, स्रोतियां दी जुबान, आकाशवाणी FM बठिंडा, FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते।
6: ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
3: ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬੜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਤੇ ਹੈ। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
0: ਹਰ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਪੁਰਮ IGL ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਅਪ ਟੂ 85% LTV ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ।
0: ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਾਪੁਰਮ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਮੰਨਾਪੁਰਮ IGL ਗੋਲਡ ਲੋਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
2: ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-800-420-2233।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
7: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
6: ਸਰੋਤਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी।

0: ने लिखा है,
1: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान

0: कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, मैं सोच रही थी, जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
1: जी हाँ, ये तो है।
0: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
1: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
0: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
1: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
0: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
0: जी
1: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
0: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
0: जी,
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
0: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी,
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
0: जी।
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी।
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओं, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओं, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी।
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी।
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हैं,

0: यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है
1: तो निराश मत होइए, हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
1: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
3: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी
4: सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
5: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
3: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार।

0: और झुमरू और झुमकी।
1: किरदार आए हैं,
2: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो
3: आ गए।

0: प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है,
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, सुनिए।
1: पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यू चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यू चलता जाता।
2: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
6: बहुत अच्छा।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
8: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
9: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ

0: छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
1: ये तुम्हारा हरा दिया, हरा दिया।
2: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
3: जी,
2: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
3: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
2: ये कैसी अजीब बात है?
3: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
2: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
3: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
2: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
3: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
2: अच्छा?
3: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
2: हाँ बेटा सुनाता हूँ। अरे सोचने तो दो,
3: जल्दी
2: मैं
3: सोचिए।
2: किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
3: अरे जीवन काका।
2: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
4: बाबूजी,
2: हाँ?
4: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
2: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
4: जी
2: यहाँ लेट जाओ।
4: जी
2: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
3: जी
2: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
3: जी अभी लाई।
2: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
4: जी
2: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
4: जी।
2: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
4: जी जी जी।
2: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
3: जी नाना जी।
2: हाँ ला बेटा ला। जीवन
4: जी
2: जरा मुंह खोलो,
4: आ, आ, आ,
2: लो इसे जीभ के नीचे रख लो।
4: आ, आ, आ, आ,

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।

0: Shalom.
1: ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे पूरा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
2: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
2: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
2: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
2: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
2: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
2: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
2: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
2: हाँ जी।
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
2: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
2: जी।
1: समझ गई ना
2: जी।
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
2: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
2: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
2: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
2: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
2: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
2: अच्छा।

0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हाँ?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोते, हुणे तुसी सुन रहे सी NCERT वालों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग, ते तुसी इस दा 1354वां भाग सुनिया। तुसी ट्यून किया है आकाशवाणी FM बठिंडा, FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। स्टूडियो दी कड़ी ते समा हो रहा है जी 8:30, ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत।

0: ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ।
1: ਨਮਸਕਾਰ ਸਰੋਤਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੱਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ 77 173 73 146। ਹਾਂਜੀ, ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
2: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना। श्रोतियों तुहानू दस दईए कि मिति 23 अगस्त दिन एतवार नूं सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत चलण वाले सिलसिले पैगाम दी रिकॉर्डिंग दिन शुक्रवार मिति 21 अगस्त नूं शाम 4 बजे कीती जावेगी। जेकर तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडे पैगाम प्रोग्राम पैगाम च शामिल होण तां अपनी शेरो शायरी रचना सानूं भेज दिओ पैगाम दे नंबर 77 173 73 146 ते। दिन शुक्रवार मिति 21 अगस्त शाम 4 बजे तों पहलां पहलां। प्रोग्राम दा प्रसारण समा 23 अगस्त दिन एतवार सवेरे 7 बजे।
1: हां जी श्रोतियो, जो सानूं वट्सएप सुनेहे मिले ने उहनां दे विच पहला जिहड़ा सुनेहा शामिल करन लग्गिया, प्रगट सिंह ढिल्लों, जशनप्रीत सिंह ढिल्लों, गुरफतेह सिंह धालीवाल, गुरनूर कौर धालीवाल, पिंड ढिल्लवां, जिला बरनाला तो, फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, इसे तरह ही पिंड फुलों मिट्टी तो ही सानू वट्सएप सुनेहा मिलिया।

0: ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ।
1: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल, और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: हाँ जी सरों, तो अगला जो सानू व्हाट्सएप स्नेहा मिलिया जी, ओह मिलेगा पिंड ढड्डे तो। अमरिंदर सिंह यूके, बलजिंदर कौर यूके, जसगुण कौर यूके, उपकार सिंह सिद्धू, जसकीरत सिंह फागू, हरबंस सिंह ढड्डे। तो ये नाल ही जी सानू अगला जिहड़ा व्हाट्सएप स्नेहा मिलेगा वह मिले पिंड बलाड़ विंजू तो। हरबंस सिंह, जसविंदर कौर, सुखराब दीप, गुर

0: ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਤੇ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 8:50। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਉਸ
1: ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ

0: लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
4: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के

0: में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलबर्टो डे ला एस्प्रिएला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यम।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A report.
4: The high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. The other members of the high-powered inquiry committee are former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी और फिल्म का नाम है पासपोर्ट।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही
2: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे,
3: ओए हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे रे।
0: भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन, उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

16 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक।

से पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

0: माने ना कहना पागल मस्त पवन साधल ये डोले ओले ओले ओले ओले ओले ओले ओले ओले ओले ओले।
1: ये दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती, बेफिक्र, अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी

उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1999 में सैफ अली खान को वो सफलता मिली जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म थी

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

0: I love you. I love you.
1: इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है, जिसे

दिल चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ और सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को समझाया और बस वो रम गए इस किरदार में।

0: ये चेहरा ऐसा खिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
1: ये वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सैफ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

अली खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सैफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय

उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

अभिनय में एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी इस चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आजकल।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉकटेल।

क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीक से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: वो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, कालाकांडी, बाजार और शिफ्ट। शिफ्ट फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग दी। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्टर गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत हर रोज दस्तक नहीं देती, कभी कभी किसी की निगाह में, किसी की मुस्कान में, या किसी की खामोश परवाह में वो यूं उतरती है कि सारी उम्र उसकी महक साथ चलती रहती है। ऐसे एहसास किस्मत वालों को नसीब होते हैं। जब भी जिंदगी किसी के रूप में ये अनमोल इनायत बख्शे, उसे अपना हक नहीं रब की मेहर समझकर संभाल लेना, क्योंकि दिल को मोहब्बत का आसमान हर बार नहीं मिलता।

ये दुनिया चाहे कितनी ही हसीन क्यों ना हो, उसकी सारी रौनक तेरी दो निगाहों के आगे फीकी पड़ जाती है। अब तो मेरी धड़कनों का पता भी इन्हीं आंखों से पूछना पड़ता है, क्योंकि मेरा सारा जहां इन्हीं में आकर बस गया है। इन्हीं में सुबह की पहली किरण और इन्हीं में शाम की आखिरी रोशनी, मेरी हर राह अब इन्हीं की तरफ जाती है।

उसकी आने की आहट भर से जैसे मौसम अपना मिजाज बदल लेता है, हवाएं कुछ ज्यादा ही महकने लगती हैं, फूलों को जैसे मुस्कुराने की वजह मिल जाती है, धूप भी नर्म पड़ जाती है और शाम अपने आंचल में सुनहरी रंग समेट लाती है। उसकी एक मुस्कान से दिल की वीरान बस्तियां आबाद हो उठती हैं। लगता है जैसे बहार किसी बाग में नहीं, उसके कदमों के साथ ही चली आ रही हो।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेम कभी शब्दों से नहीं, पलकों की हल्की सी झपक और नजरों की मासूम शरारत से अपना परिचय देता है। एक संकोच भरा इशारा दिल में अनगिनत ख्वाब जगा देता है, तो एक मुस्कान सारी दुनिया को भुला देती है। मिलने की चाह है, मगर साथ ही दुनिया की नजरों का लिहाज भी। यही झिझक, यही छेड़छाड़ और यही अनकहे वादे प्रेम को और भी मधुर बना देते हैं। जब दो दिल एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझने लगते हैं, तब हर खामोशी अपने आप में सबसे हसीन इजहार बन जाती है।

सामने वो हर रोज नजर आती है, पर जैसे हमारे हिस्से की नहीं। उसकी एक झलक ही दिल की धड़कनों को बदल देने के लिए काफी है। फिर भी न जाने कैसी दूरी है जो कभी मिटती ही नहीं। आंखें हर पल उसी राह पर ठहरी रहती हैं, जहां उसके आने की उम्मीद बसती है। मौसम बदलते रहते हैं, दिन बीतते जाते हैं, मगर इंतजार का रंग फीका नहीं पड़ता। प्रेम का सबसे गहरा दर्द शायद यही है, जब कोई इतना करीब हो कि दिखाई दे और इतना दूर कि छू भी ना सके। तब हर दिन एक आस बन जाता है और हर रात उसी अधूरी चाह का नाम।

सावन केवल धरती को ही नहीं, मन को भी भिगा देता है। हवा का हर झोंका जैसे प्रेम का कोई अनकहा संदेश लेकर आता है। प्रकृति का हर स्वर हृदय में नई उमंग जगा देता है। ऐसे में मन मोर की तरह थिरक उठता है और भावनाएं किसी बहती नदी की धारा सी अपने आप दिशा खोजने लगती है। विरह हो तो बादलों में प्रिय का संदेश सुनाई देता है, और मिलन हो तो हर बूंद उत्सव बन जाती है।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

आज के छाए गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।